हनुमान। भक्तजनों, तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस में सबसे सुंदर प्रसंग आता है सुंदर कांड का। जी हाँ, यह सुंदर कांड परम राम भक्त श्री हनुमान जी की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन करता है। कहते हैं सुंदर कांड को पढ़ने, सुनने एवं गाने से भक्तों को पूरी रामायण पढ़ने का शुभ फल प्राप्त होता है, तथा साथ ही साथ हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी की कृपाएं प्राप्त होती हैं। तो आइए पवित्र पावन सुंदर कांड का संगीतमय श्रवण इस सरल वाणी में सुनते हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए।

श्री हनुमान जी, अंगद, जामवंत जी और अन्य वीर सागर तट पर आ पहुंचे हैं। जामवंत के याद दिलाने पर श्री हनुमान जी को उनका बल याद आ जाता है और वे प्रभु राम जी की मुद्रिका को मुख में डालकर पवन वेग से उड़कर सागर पार करने को निकल पड़ते।

श्री हनुमान जी उसके पेट में से होकर निकल आते हैं। सुरसा उनकी चतुराई से अति प्रसन्न होती है और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देती है। उड़ते उड़ते हनुमान जी लंका नगरी आ पहुंचते हैं कि क्या देखते हैं, द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही है। श्री हनुमान जी ज्यों ही लघु रूप बनाकर भीतर प्रवेश करने लगते हैं कि लंकिनी उनका मार्ग रोककर उनसे

सीता से वात्सल्य और ढेर सारे वरदान प्राप्त करते हैं। माँ सीता की अनुमति लेकर वो बगिया से फल तोड़कर खाने लगते हैं, जिससे उनका राक्षसों से भयंकर युद्ध हो जाता है, जिसमें रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी उनके हाथों मारा जाता है। अब रावण का परम प्रतापी पुत्र मेघनाद उन्हें पकड़कर अपने पिता रावण के पास ले जाता है।

लगी हुई पूंछ से चला दिया। इधर हनुमान जी जय श्री राम बोलते जाते, उधर लंका में हाहाकार मचता जाता। एक विभीषण की कुटिया को छोड़ सारी लंका जलकर राख बना दी। समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाकर हनुमान जी माँ सिया के सन्मुख फिर आते हैं और निशानी स्वरूप उनकी चूड़ा मणि लेकर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए रामा दल में लौट आते हैं। प्रभु श्री राम सीता का संदेश प्राप्त करते हैं तो हनुमान को हृदय से लगा लेते हैं और उन्हें भरत समान भाई बताते हैं। अब प्रभु की सेना सागर तट पर आ पहुंची है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि

0: आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप एक के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति भौतिक सुखों के लिए नहीं, अभी तो आध्यात्मिक सुखों के लिए होनी चाहिए। सुख का साधन प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सुख नहीं। यह निर्णय हर व्यक्ति को स्वयं ही लेना पड़ता है कि वो किस ओर

भक्ति का मौलिक सूत्र यही है कि हमारी पुकार परमात्मा को ले आती है। एक बार हृदय से पुकारो तो आसन, योग, श्रवण, मनन किसी की जरूरत नहीं। केवल भाव करो, प्रेम से पुकारो तो ईश्वर जरूर आता है।

0: AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आज 23 जून मंगलवार को सुबह 7 आप सुनेंगे सदाबहार नगमे और 7:45 पर सुगम संगीत।

नमस्कार। उदयपुर का समय रहेगा सुबह 8:30 पर, जो आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के हमारे दोनों चैनल्स पर एक साथ। साथ ही फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 से लेकर सुबह 11 तक। सुबह 11 होगा शास्त्रीय संगीत, 11:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप फिर से सुनेंगे दोपहर 12 से 1 तक। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी लेकर हम हाजिर होंगे दोपहर 1:05 पर। और एक बार फिल्म संगीत के सफर पर आपको ले चलेंगे दोपहर 1:45 से। किसान भाई बहनों का कार्यक्रम कृषि जगत आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। और शाम 5 आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम होगा हमारे मीडियम वेव और एफएम दोनों चैनल्स पर एक साथ। शाम को फिल्मी तरानों का प्रोग्राम फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुन सकेंगे शाम 6:05 से। खेती और पशुपालन का विशेष कार्यक्रम खेती और घर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 और रात्रि 8 आप सुनेंगे एक बार फिर फिल्म संगीत। सुगम संगीत होगा रात्रि 9:15 पर। नई फिल्मों से फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। और रात्रि 10 आप सुनेंगे मनचाहे गीत, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम 60 लगातार, म्यूजिक धमाकेदार होगा, तो सुनिएगा रात्रि 10। तो ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान, भाग संख्या 117। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती में आज।
1: राम राम किसान भाइयों, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाइयों ने पेमा भाईरो राम राम। देखो सा किसान भाइयों, अपना कार्यक्रम भी टेम भी और मुँह आयो अपना घनी सारी जानकारी देवर वास्ते। तो जून महीना रहा मतलब बाणु की जो टेम चल रही है, ई टेम पे अपने खेती बाड़ी को जो काम काज कई वे वरना आपकी कितर करना चाहवा इकी जानकारी देवा। तो इनमें देखो कि फल उत्पादन आप ही करा हाँ विकी जानकारी देवा, बागवानी संबंधी काम जो आप ही करा वो भी जानकारी देवा, सब्जी है या पचे फूल को उत्पादन करवा वाला किसान भाई है वनारे वास्ते या जानकारी है। और देखो यो जून महीना चाली रो है तो अणी महीना रे महीना आप जो काम करना चाहवा विकी बड़ी सावधानी रखवारी जरूरत पड़े है। क्योंकि देखो बाणूरी टेम जो है गर्मी को मौसम भी चल रही है और लारा लारा वर्का हवा की टेम भी चल रही है। तो अणी बदलता दिखा मौसम में खेती बाड़ी में जितना भी काम काज करा हाँ तो वन में काम काज में कई सारी सावधानी की जरूरत पड़े और आप जो बुआई करा हाँ तो बुआई की टेम पे कुछ बातों को अपने ध्यान रखना पड़े। कसी भी फसल आप करा तो वन में देखो बीज को उपचार वेगियो या पचे बीज की मात्रा कतरी लेनी, कीटनाशक रो इस्तेमाल कतरो करनो है, रोग जो लाग जाओ वणियो निदान अपन कणी तरह पाणो है। तो ये सब बातों की जानकारी अपने वेनी चाहवे। क्योंकि देखो वर्कार मौसम और जो बदलते देखो मौसम है तो वणी टाइम पे कीट रोग की भी आशंका वती दिखी रहे। तो अणी स्थिति में कहीं आप बचाव करता दिखे जब फसल करा और जो भी खेती बाड़ी करा तो वन में नुकसान की व्यवहार की आशंका रहे, वणी ने आप कम कतरी कर सका यो अपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो फल उत्पादन की बात करें तो देखो सिंचित मूंगफली की बुआई जो आप ही करा तो वणी को सही टाइम जो है बाणो चाल रही है, जून को जो ये महीनों चल रहे हो इन टाइम पे आप ही करना चाहवा। और अणी महीना में देखो देखो अपने मिट्टी की जांच के आधार पर अंतिम जुताई पहले अपना प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम वो मिलावनो चाहवे। मूंगफली की खेत्र महीने देखो अपना प्रति हेक्टर 60 किलो फास्फोरस और 15 किलो नत्रजन, जन में देखो 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट वे सके और 35 किलो यूरिया वे सके। तो बुआई पहली जो है अपना नायला महीने और यो काम भी करना चाहवे और फास्फेट तत्व की पूर्ति रे वास्ते अपना सिंगल सुपर फास्फेट जिन्हें SSP भी अपी केवा वणी के माध्यम ज़्यादा फायदेमंद वे सके। सा ज्वार में तना मक्की कीट नियंत्रण का वास्ते अपने मानसून पहली मतलब वर्षा आवे की टाइम वे वणी पहली जो है अपना वर्षा वेवा के एक सप्ताह का अंदर जो है बुआई करनी चाहवे। और देरों बोई लकी जो भी फसल है वन में कार्बोफ्यूरोन 30% जो है कण 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दरों अपने उम्र और महीने डालन जो है बुआई करनी चाहवे। खरीफ फसल में खास तौर पे देखो दलहनी फसल जो है वन में कातरा को प्रयोग अपने करनो चाहवे। कीट की लट वाली जो अवस्था है वणियो फसल ने नुकसान वत्तो पहुंचे तो अणी कीट के पतंगा जो है वणी नष्ट करवा वास्ते अपने प्रकाश पोष जो है वण को उपयोग करनो चाहवे। अणी का वास्ते कही है कि वर्षा की टाइम पे यदि शुरू वेरी वे तो अपने खेतर महीने मेड़ा का उपरे या चरागाह पे देखो गैस की लालटेन या पचे बल्ब लगावना चाहवे। एको की है कि नीचे 5% मिट्टी रो तेल बिना आप घास लेट भी कहवा बिना पानी रे महीने मिलाइन कणी ठामड़ा रे महीने बर्तन रे महीने रख देना चाहवे। एको की है कि देखो प्रकाश पे कातरा का पतंगा जो है वह आकर्षित वे नावे और नीचे पड़े लोगों जो भी घास लेट है वने रे महीने पानी रे महीने गिरन मर जावे। कातरा की छोटी अवस्था रे महीने लट जो है वह अपना फसल में दिखाई देती।

ये अपना है क्यूनालफॉस 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर जो है अपना फसल महीने बुरकाव करना चाहवे। क्षारीय और लवणी मिट्टी में बोवारा पहली जो अपने बाजरा का बीज जो है 1% सोडियम सल्फाइड जो है वण का घोल मिलाने 4 घंटा तक वण में भिगोन रखना चाहवे। साफ पानी धोई पचे वना छाया में सुखाई दा और पचे बीज ने कवकनाशी उपचारित अपी कारण बुवाई करना चाहवा। आसान करना तो कही है कि उपचारित बीज जो है वो खारी मिट्टी में भी अंकुरण अच्छो बैठे। और देखो कि बाजरा में गुंदिया या पे चेपा सूँ फसल जो है वन में बचाव वास्ते अपने बीज ने नमक का पानी रे महीने मतलब 20% घोल को अपना तैयार करना है। जिन में 1 किलो नमक और 5 लीटर पानी जो है वो मिलाई जो अणम को काम में लेना है और अण में डुबोन रखना है और 5 मिनट तक करीब डुबोन रखा तो आप यो काम वही जावे और तैरता दिखा हल्का बीज जो है या पचे कचरो बगदो है वो हट जाएगा और वच्चा दिखा जो बीज है वरना साफ पानी में धोई जो अच्छी प्रकारों आप छायादार जगह में सुखावना चाहे और इसके बाद जो है

पानी जो है वो मिलाई जो अण को काम में लेनो है और अण में डुबोन राखनो है, और 5 मिनट तक करीब डुबोन रखा तो आप यो काम वही जावे और तैरता दिखा हल्का बीज जो है या पचे कचरो बगदो है वो हट जाएगा और वचा दिखा जो बीज है वरना साफ पानी में धोई जो अच्छी प्रकारों आप छायादार जगह में सुखावना चाहवे और इसके बाद जो है बुआरों काम आप कर लेना चाहवा। मूंगफली में गलकट मतलब कॉलर रोट नाम को जो रोग व्या करे अणियों मंचावर वास्ते बुआयू पहले अपने प्रति किलो बीज जो है 3 ग्राम थायरम 75% WP या पचे 2 ग्राम मैनकोजेबू उपचारित करना चाहवा। रासायनिक फफूंदी नाशी को कम उपयोग करना चाहवा और यो देखो कि अपना बीज जो है वनने आपी काम में लेवा तो पचे एनिमल उपचारित करवो जरूरी व्या करें और वही हिसाब आपी काम में लेवा तो यो काम भी अच्छो तरह वे सके। क्षारी और लवणी मिट्टी में बोवारों पहले अपने बाजरा का बीज ने 1% सोडियम सल्फेट का घोल रमई ने 4 घंटा तक भिगोन साफ पानी में धोना चाहवा और पचे छायादार जगह में सुखान बीज ने है कवक नाशी का रूप में उपचारित कर बुआई करना चाहवा। अशो अपी करना तो देखो उपचारित बीज जो है खारी मिट्टी में भी अंकुरण अच्छो बैठे और इकलारे देखो कि अपना आगे को काम अपी करना तो देखो कि मूंगफली का जो गलकट रोग है वणियों मंजावर वास्ते बुआई पहली प्रति किलो बीज जो है 3 ग्राम थायरम 75% WP या पचे 2 ग्राम मैनकोजेबू उपचारित करना चाहवा। रासायनिक फफूंद नाशी को कम उपयोग करता दिखाई जापी देखो बीज ने क्रमशः थायरम 1.5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम और राइजोबियम कल्चर 3 पैकेट प्रति किलोग्राम बीज की दर जो है अपने उपचारित करण बुआई करना चाहवा। इनका साथ ही देखो अपना बुआई पहले अपना ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दरों 500 किलोग्राम गोबर खाद जो है वह मिलाइन जमीन में मिलावान काम में लेना चाहवा। अणि इस तरह देखो बागवानी संबंधी आप काम कर रहे हैं तो नींबू वर्गी फलदार जो भी पौधा है वणी ने रोग और अन्य कारण मतलब जलवायु संबंधी जो भी कारण है वणी वंचावना चाहवा। तोड़ाई पहली जो है फल ने आप गिरवा की स्थिति वे या पचे तोड़ाई के बाद में आप फल जो है सड़वा की स्थिति में वे तो वणी वंचावर वास्ते कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी रे महीने या पचे प्रोपीनेब 70 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रे महीने या पचे जैव नियंत्रक यीस्ट जो व्या करे वणु में आपी 10 CFU प्रति मिलीलीटर पानी रे महीने घोल मिलाइन 5 छिड़काव करना चाहवा। जे देखो छिड़काव व्या करे वे मार्च अप्रैल अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने आपी करी सका। अप्रैल अगस्त और सितंबर महीना रे महीने देखो छिड़काव का वास्ते अपना प्रयोग किया जावे तो को गोल में जिब्रेलिक एसिड या पचे 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी रे महीने आणि एसिड ने मिलाइन जो है गोल को छिड़काव अपने करना चाहवे। बेर का काट छाट करा पिए तो वणियों देखो कि नया प्रपोह जो है वन में अधिक संख्या रे महीने फूल और फल आई सके। काट्यादि का जो भी स्थान है वन में फफूंद नाशी बोर्डेक्स मिश्रण जो है वणी में आप लेप लगाई जो काम में लेना चाहवा। नींबू वर्गीय पौधा जो है वन में कीटा में पर्ण सुरंग कीट जो व्या करे वन का लार्वा बहुत छोटा व्या करे जो नींबू रे महीने पत्तियां की सतह का अंदर जो है टेढ़ी मेढ़ी सुरंग वणी देवे चांदी का रंग का यदि दिखता दिखा चमकता दिखाई अपने दिखाई देवे और प्रभावित पत्तियां जो भी है वणा का किनारा के अंदर जो है वहीं की तरफ जो है मुड़ता दिखाई दिखाई देवे। जनियों की है कि नई बढ़वार जो है बुरी तरह प्रभावित व्या करे और वर्षा की टेम यदि वे वणी टेम पानी को प्रकोप ज़्यादा भी जावे तो इनको प्रभाव जो है नज़र आते देखो दिखे तो अपन क्यूनाल फोस 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रे महीने मिलाई जेण को छिड़काव करना चाहवे। या तो भी जानकारी और अब कार्यक्रम जावारी टाइम भी तो चाला सा राम राम सा।

0: मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती में आज, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उसे

सदाबहार नगमे का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। और पहली प्रस्तुति अभी आपने सुनी, फिल्म का नाम ये वादा रहा, आवाजें आशा भोंसले और किशोर कुमार की। इस गीत को अपने संगीत से सजाया आरडी बर्मन ने और बोल लिखे गुलशन बावरा ने। सदाबहार नगमे में अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, फिल्म है माचिस। इस गीत को अपनी आवाजें दी है के सुरेश वाडेकर, ए हरिहरन और विनोद सहगल ने। गीत को अपने संगीत से सजाया विशाल भारद्वाज और बोल लिखे हैं गुलजार ने। तो आइए मिलकर सुनते हैं माचिस फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्ते पे सत्ता। इस गीत को अपने संगीत से सजाया आरडी बर्मन ने और बोल लिखे गुलशन बावरा ने। सदाबहार नगमे का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने आपके लिए चुना है फिल्म कश्मीर की कली। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की, संगीत ओपी नैयर का और बोल लिखे SH बिहारी ने।

0: किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म का नाम कर्ज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और बोल लिखे आनंद बख्शी ने।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारी ना,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
3: और ये
4: मेरी गुड़िया थी ना।
5: पर दादी आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो
5: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
8: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
9: बन गया बजट?
8: हाँ 5,000 बच गए।
9: तो नई साड़ी ले ले।
8: ना पिछले महीने तो ली थी।
9: एक और
8: नहीं, पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
9: बढ़िया
8: जाओ भाई।
6: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
11: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। आराधना फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया। इस गीत को अपने संगीत से सजाया SD बर्मन ने और इस गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने। अब आपको सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं। अंतिम प्रस्तुति आवाज़ है मनहर उदास की, उषा खन्ना का संगीत है। इस गीत के बोल लिखे हैं निदा फाजली ने और ये गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म आप तो ऐसे ना थे से।

आप तो ऐसे ना थे मनहर उदास की आवाज और इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं। ये समय है सुगम संगीत का। सुगम संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में गाया ये गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सुगम संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और अब आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में गाया ये गीत।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण

0: मुझे। भूपेंद्र सिंह की आवाज में गाइस गीत के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल।

0: और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता में मूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैदान का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों

0: को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says, principle of nation first, has been driving force behind India's transformation into a fast growing, credible and reliable

0: जहाँ किसी की पीड़ा दिखे वहाँ संवेदना बन जाना, जहाँ अंधेरा गहरा हो वहाँ दीपक बन जगमगाना, भूखे को भोजन मिले और जल मिले प्यासे को, निराश हृदय को आशा देकर जीवन को नया आशय देना, न नाम मिले न यश की चाह, न सम्मान की हो अभिलाषा, बस जनहित की भावना लेकर हर कदम पर हो सेवा की भाषा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। आज के कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे के इस बेहद रोचक अंक में आपके रेडियो सेट पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा श्रीमाली और मेरे साथ हैं
1: अनीता। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और नेहा, आज के इस कम्युनिटी कनेक्ट मंगलवार में क्या है खास?
0: बिल्कुल अनीता, कार्यक्रम के सबसे पहले सेगमेंट यानी कि डे ब्रेकर में हम बात करेंगे उदयपुर शहर की प्रमुख स्थानीय खबरों के बारे में, साथ ही खेल जगत की खबरों में महिला T20 विश्व कप के साथ फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट भी होगी, और इसके साथ ही सोशल पल्स यानी समाज के नब्ज में होगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोक संस्कृति का संरक्षण की बातें,
1: और जानकारी देंगे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की, और मौसम स्वास्थ्य सेगमेंट में बात करेंगे मौसम परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य की। तो इसके साथ ही सुनवाते हैं श्रोताओं को ये खूबसूरत सा नगमा।

0: बिल्कुल अनीता, इश्क तो हमें भी हमारे श्रोताओं से है, तभी तो हम रोज उनकी पसंद का प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर लेकर हाजिर हो जाते हैं।
1: जी,
0: और आज के कार्यक्रम में सबसे पहले सेगमेंट में शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों से। तो बात करते हैं नगर निगम के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2026 में सोमवार को भी बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। लोगों ने अपने लंबे समय से अटके काम पूरे करवाए और विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया। एक ही जगह अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहने से कई मामलों का मौके पर ही समाधान हो गया। शिविर का उद्देश्य लोगों को निगम से जुड़ी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराना है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है, जिन लोगों के निगम से जुड़े काम अभी बाकी हैं, वे शिविर में पहुंचकर उनका समाधान करवा सकते हैं। साथ ही शिविर का लाभ ले चुके लोग इसकी जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके।
1: बिल्कुल सही है। और झीलों की नगरी उदयपुर की खूबसूरती और यहाँ के शाही अंदाज का दीवाना कौन नहीं है। अब इसी बेमिसाल मेहमान नवाजी और दुनिया में सबसे बड़े ट्रैवल पोर्टल ट्रिप एडवाइजर ने भी मोहर लगा दी है। तो ट्रिप एडवाइजर ने ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2026 की लिस्ट जारी की है, जिसमें उदयपुर के 3 सहित राजस्थान के कई होटलों ने देश के टॉप संस्थानों में अपनी जगह बनाकर डंका बजाया है। और ट्रिप एडवाइजर की यह रैंकिंग इसलिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है, क्योंकि यह किसी जूरी द्वारा नहीं बल्कि दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के खुद के अनुभवों, उनकी रैंकिंग और रिव्यूज के आधार पर तय होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बाद उदयपुर और राजस्थान में विदेशी और घरेलू पर्यटकों का आना और ज्यादा बढ़ जाएगा।
0: बिल्कुल अनीता, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जानकारी देते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेले गए महत्वपूर्ण मुकाबलों को। तो रुक करते हैं अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले का। ये मैच भारतीय समयानुसार 22 जून की रात लगभग 10:30 बजे खेला गया। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। कप्तान लियोनेल मेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व कप इतिहास में अपना 17वां गोल दागा और नया रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस और इराक आमने सामने थे। ये मैच भारतीय समयानुसार 23 जून की रात लगभग 2:30 पर खेला गया। फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त दी। खराब मौसम और बिजली गिरने की चेतावनी के कारण मैच कुछ समय के लिए रुका रहा, लेकिन फ्रांस ने अपना दबदबा कायम रखा। और वहीं नॉर्वे और सेनेगल के बीच रोमांचक मुकाबला भारतीय समयानुसार 23 जून की सुबह लगभग 5:30 पर खेला गया। नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट चरण की ओर मजबूत कदम बढ़ाया। और इसके साथ ही लाइव मैच की अगर बात करें तो आज सुबह 8:30 पर शुरू हुआ है मैच जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच में।
1: और अब बात करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप की। तो इंग्लैंड में जारी महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का विजय रथ थम गया है। लगातार

लगातार दो जीत से शुरुआत करने वाली विमेन इन ब्लू को तीसरे मुकाबले में पिछली फाइनलिस्ट दक्षिण अफ्रीका के हाथों 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। इस हार से हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह बेहद मुश्किल हो गई है। टीम को बाकी बचे दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे और गुरुवार को भारत का सामना बांग्लादेश से होगा और इसके बाद लीग के अंतिम और सबसे बड़े मुकाबले में टीम को 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम की चुनौती से पार पाना होगा। और अगर आज के मैच की बात करें तो टूर्नामेंट में चौथी बार ट्रिपल हेडर रहेगा और दोपहर 3 बजे से डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम स्कॉटलैंड से भिड़ेगी और जबकि शाम 7 बजे से श्रीलंका और आयरलैंड का मुकाबला होगा। रात 11 बजे 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम पाक से खेलेगी।

तो अनीता, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं आज का हमारा सेगमेंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोक संस्कृति का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। भारत जो है वो विविधताओं का देश है और यहाँ की लोक भाषाएं, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, हस्तकलाएं और पारंपरिक रीति रिवाज हमारी सांस्कृतिक पहचान का महत्व

0: महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन बदलते समय में और आधुनिक जीवन शैली के बीच ये चिंता भी बड़ी है कि कहीं हमारी लोक संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त ना हो जाए। ऐसे समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म लोक संस्कृति के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को एक छोटे से मंच में बदल दिया है। पहले जो लोकगीत किसी गाँव या क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते थे, वो आज YouTube, Facebook, Instagram और पॉडकास्ट जैसे माध्यमों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। इससे लोक कलाकारों को नई पहचान और व्यापक दर्शक वर्ग मिल रहा है।
0: बिल्कुल अनीता, और राजस्थान, मेवाड़, मारवाड़, मालवा या देश के अन्य क्षेत्रों की लोक परंपराएं अब डिजिटल अभिलेखों के रूप में सुरक्षित की जा रही है। लोक गीतों की रिकॉर्डिंग, लोक नृत्यों के वीडियो, लोक कथाओं के ऑडियो संग्रह और पारंपरिक कलाओं के डिजिटल दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन रहे हैं।
1: और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक बड़ा लाभ ये भी है कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ पा रही है। आज कई युवा कलाकार लोक संगीत को आधुनिक प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने ला रहे हैं। इससे परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सुंदर संतुलन बन रहा है।
0: बिल्कुल, संतुलन तो बन रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक सावधानी भी आवश्यक है। लोक संस्कृति को प्रस्तुत करते समय उसकी मौलिकता, भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। केवल लोकप्रियता के लिए उसके मूल स्वरूप को छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए।
1: और संस्कृति केवल संग्रहालयों में रखी वस्तु नहीं होती, बल्कि वह जीवित परंपरा होती है जो लोगों के जीवन, भाषा और व्यवहार में बसती है। डिजिटल माध्यमों ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपनी लोक विरासत को न केवल सुरक्षित रखें, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर पहचान भी दिलाएं।
0: बिल्कुल, तकनीक तभी सार्थक है जब हम हमारी जड़ों से जुड़े रहें। डिजिटल दुनिया में लोक संस्कृति का संरक्षण केवल परंपरा को बचाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी पहचान को सुरक्षित रखना है।

0: तो नेहा देखो, हर दिन कुछ खास होता है और हर दिन कुछ ना कुछ संदेश जरूर देता है। तो हर साल 23 जून को पूरी दुनिया में विकास और समाज कल्याण में लोक सेवाओं के उन अमूल्य योगदान और उनकी कड़ी मेहनत को सम्मानित करने का दिन, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। आज के दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये बताते हैं कि समाज और देश के विकास में प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मचारियों जैसे सभी लोक सेवकों की भूमिका को पहचानना।
1: बिल्कुल अनीता, युवा पीढ़ी को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने और समाज की सेवा के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना, लोक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही, नवीनता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देना है आज के दिन का उद्देश्य।
0: जी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और पहली बार यह दिवस 23 जून 2003 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र हर साल एक विशेष पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन करता है और यह पुरस्कार उन सरकारी संस्थानों और परियोजनाओं को दिया जाता है जिन्होंने सार्वजनिक प्रशासन में कोई अनोखा, इनोवेटिव और अत्यधिक प्रभावी काम किया हो।
1: बिल्कुल अनीता, 2030 तक इनका लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और लैंगिक समानता को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए।
0: और 2026 की थीम और आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 23 से 25 जून 2026 तक जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिस में किया जाएगा और जिसका विषय है सार्वजनिक संस्थाओं का रूपांतरण, नवाचार, सहभागिता और समावेशन को बढ़ावा देना।

0: बिल्कुल अनीता, और नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम हम सुन रहे हैं आकाशवाणी के दोनों केंद्रों पर एक साथ। और अब हमारे श्रोताओं को जानकारी देते हैं मौसम के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा नेहा, मौसम की अगर बात करें तो वैसे तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है। जो तापमान 40-41 हो गया था वो अब थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि है ना जो गर्मी का जो मौसम है उसमें विशेषज्ञों के अनुसार बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं की गति थोड़ी तेज हो गई है। इसके चलते दक्षिणी राजस्थान में जल्द ही प्री मानसून शुरू होने वाला है। अगले 2-3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और तेज गति से हवाएं भी चलेंगी और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना भी है। तो उससे माना जा रहा है कि थोड़ा तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहाना हो जाएगा, क्योंकि जिस बारिश का हम इंतजार कर रहे हैं उस बारिश के आने से मौसम सुहाना हो जाएगा।
0: बिल्कुल, और मौसम का इंतजार तो हम सबको है ही।

0: शुभारंभ करेंगे और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की, ऑनलाइन आवेदन शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को पद्म पुरस्कार मिलेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण सहित 131 पद्म अलंकरणों की घोषणा की थी। यमुना जल परियोजना के एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। बैठक में दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक विषयों पर निर्णायक चर्चा की जाएगी। इस परियोजना से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र को पीने के पानी की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। गौरतलब है कि यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। ये डीपीआर केंद्रीय जल आयोग के साथ भी साझा कर दी गई है। प्रदेश के सरहदी जिलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इन क्षेत्रों में एक निश्चित दायरे के भीतर बने निर्माण कार्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हटाया जा रहा है। श्री पटेल ने बताया कि राज्य सरकार सुरक्षा के मामले को लेकर पूरी तरह सजग है।
1: पाकिस्तान की बॉर्डर से एक निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी कचरे का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा और वहाँ कोई अलॉटमेंट भी नहीं होगा, न स्थायी निर्माण होगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जब केंद्र सरकार के ध्यान में ये लाया गया कि ऐसे जो निर्माण है वो निर्धारित परिधि के अंदर है, वहाँ निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, अलॉटमेंट प्रतिबंधित है, और ये भी ध्यान में लाया गया कि इनकी गतिविधियाँ देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के ठीक नहीं है, तो माननीय केंद्र सरकार के निर्देशानुसार क्लीन शिप के नाम से जो निर्धारित अवधि के अंदर जहां अलॉटमेंट या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता उसके अंदर है, उनको साफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
0: राजस्थान में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ये समिति राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करेगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल जयपुर में प्रेस वार्ता में जानकारी दी। श्री बेढ़म ने बताया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। ये समिति संभाग स्तर पर लोगों से सीधा संवाद करेगी। इसके अलावा आम नागरिक वेबसाइट के जरिए भी अपने सुझाव समिति तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से प्रदेश को नई दशा और दिशा मिलेगी।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। मैं समझ सकता हूं कि ये यूसीसी राजस्थान में लागू होने के बाद एक नई दशा और दिशा प्रदेश को मिलेगी। उस कानून के लागू होने के बाद सभी लोग एक कानून, एक प्रदेश, एक देश के तहत अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कार्यविधियों को और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता

0: आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव और एफएम बैंड दोनों ही चैनल्स पर आप एक साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का

0: सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इसे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री शाह नेफेड के निदेशक मंडल के साथ बैठक करेंगे। हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल नई हज नीति 2027 जारी की। इच्छुक लोग भारतीय हज समिति की वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी हज समिति और निजी क्षेत्र के बीच यात्रियों के कोटे का अनुपात 70-30 का रखा गया है। इसके तहत 1,22,518 सीटें भारतीय हज समिति के पास रहेंगी, जबकि 52,000 से ज्यादा सीटें निजी टूर ऑपरेटर्स के लिए निर्धारित की गई हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब द्वारा तय समय सीमा का पालन करने और तैयारियां समय पर पूरी करने के उद्देश्य से इस बार हज नीति की घोषणा जल्दी की गई है। प्रदेश में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत तथा तकनीक आधारित बनाने के लिए इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 परियोजना बनाई गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में इस परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में न्याय संहिता डैशबोर्ड पर राजस्थान के प्रदर्शन और स्कोर्ड कार्ड की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कल ही पीएम श्री और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर जमीनी स्तर पर योजनाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था को सुगम और सिग्नल फ्री बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण तेजी से काम कर रहा है। जयपुर में महल रोड की तर्ज पर अब न्यू सांगानेर रोड और सीकर रोड पर भी यू टर्न आधारित सड़कें बनाई जा रही हैं। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात दिलाना और यातायात को निर्बाध बनाना है। उन्होंने बताया कि यदि यू टर्न का ये प्रयोग सफल रहता है तो इस साल के अंत तक शहर के लगभग 21 प्रमुख ट्रैफिक चौराहों यानी जंक्शनों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
1: हम लगभग यू टर्न पैटर्न के ऊपर बेस के ऊपर ही लगभग 21 ट्रैफिक जंक्शंस को हम बंद कर पाएंगे। साथ में हम और तरीके के भी बहुत सारे हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे लोगों को अगर लेफ्ट जाना है तो उनको रेड लाइट पे खड़े ना होना पड़े। एक हमने प्रयास यहाँ पे करा था रामबाग सर्कल के ऊपर और बाकी शहरों में भी अब हमने यहाँ जेडीए सर्कल पे जेडीए चौराहे पे भी किया है। इसके साथ साथ हम लगभग 15 जुलाई के आसपास हमने 24 जंक्शन चिन्हित करे हैं, जहाँ पे हम जो हमारा कंट्रोल रूम है ट्रैफिक का, वहाँ से देख के कैमरा से देख के ही लोगों को हम वार्न करेंगे। अगर कोई रेड लाइट को क्रॉस कर रहा है या स्टॉप लाइन के आगे आ रहा है या बिना हेलमेट के कर रहा है तो हम अपने स्पीकर के थ्रू ही उनको समझाने की कोशिश करेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। यमुना जल परियोजना से संबंधित नई दिल्ली में आज होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और केंद्र सरकार ने हज यात्रा 2027 के लिए नई नीति की घोषणा की, ऑनलाइन आवेदन शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा और मेरे साथ हैं
3: अनीता।
2: तो साथियों, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

0: है वो हमारे मन पर तन पर भी पड़ता है और मौसम के बदलने से सीधा असर हमारे मूड व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मौसम के बदलने के साथ ही हमारे शरीर के भीतर कई हार्मोनल और रासायनिक बदलाव होते हैं जो सीधे हमारे मूड को प्रभावित करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण मानसिक तनाव तेज़ी से बढ़ता है और शोध बताते हैं कि ज़्यादा गर्मी होने से शरीर का तापमान भी बढ़ता है, जिसकी वजह से इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है और बात बात पर गुस्सा भी करने लगता है। यह स्वाभाविक सी चीज़ें हैं।
0: बिल्कुल अनीता, गर्मी और उमस के कारण नींद भी पूरी नहीं हो पाती, कई बार रात में लाइट भी कट जाती है और ज़्यादा गर्मी लगती है तो नींद पूरी नहीं हो पाती, और जब नींद पूरी नहीं होती तो एंग्जाइटी होती है। इसका असर हमारे दिलो दिमाग पर पड़ता है और इसलिए हमारी नींद पूरी होना भी बेहद ज़रूरी है।
1: वैसे तो आपने देखा होगा कि कई लोगों को बारिश पसंद होती है और बारिश का इंतज़ार भी हम सब कर रहे हैं, किंतु लगातार बारिश अगर होती रहे, बादल छाए रहें, तो इसका भी दिमाग पर काफ़ी असर पड़ता है। इससे भी उदासी, कुछ अच्छा नहीं लगना ऐसा लगता है, और बारिश में सीलन, गंदगी, कीड़े मकोड़े, मच्छर देखकर भी अच्छा नहीं लगता है। लाइटें चली जाती है, उसकी वजह से अंधेरा हो जाता है और इन सब का असर भी इंसान को मानसिक रूप से परेशान कर देता है।
0: तो जो मौसम है वो तो अपने समय पर बदलेगा ही, हमें खुद को मौसम के अनुसार ढालना होगा। सुबह सुबह की हल्की धूप जो है वो ज़रूर लें, आपके शरीर में जितना व्यायाम हो सके ज़रूर करें, वॉक करें, हाइड्रेट रखें, नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें, अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक सोच को साथ रखें, लोगों के साथ रहें और हर मौसम का आनंद लें।
1: जी,

अनीता, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, लेकिन बदलना तो प्रकृति का नियम है। और यही कारण है कि मौसम भी आता और जाता रहता है। इसी की बात करें तो अभी कुछ दिनों से हमारे जो मॉनसून है यानी बारिश का मौसम आ जाएगा, और मौसम के आते जाते रहते मतलब हम जो है हमारे उसका जो असर होता

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो अनीता, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए दो पहियों की जरूरत होती है ना, वैसे ही परिवार की गाड़ी को चलाने के लिए भी पति और पत्नी दोनों का साथ होना जरूरी है। यदि दोनों में से एक भी साथ नहीं रहता तो परिवार की गाड़ी डगमगाने लगती है। लेकिन बात करें महिलाओं की, तो वो पति के नहीं रहने के बाद उनका जीवन हर तरह से मुश्किल भरा हो जाता है। और आज 23 जून का दिन दुनिया भर में विधवा महिलाओं के अधिकारों, उनके साथ होने वाले भेदभाव और उनकी आर्थिक सामाजिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण दिन है।
2: जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो केवल अपने पति को ही नहीं खोती बल्कि परिवार में, समाज में आर्थिक अधिकार भी खो देती है। तो आज का दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो विधवा महिला है उसको संपत्ति और भूमि का अधिकार दिलवाना, समाज में विधवाओं के प्रति रूढ़िवादिता और सामाजिक बहिष्कार को खत्म करना है।
1: बिल्कुल अनीता, इस दिवस की शुरुआत पहली बार वर्ष 2005 में लुम्बा फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक है लॉर्ड लार्ज लुम्बा। ये राज लुम्बा की माताजी श्रीमती पुष्पावती लुम्बा बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी। उन्होंने एक विधवा के रूप में समाज के कड़े भेदभाव और संघर्षों को झेला। अपनी माताजी को इस संघर्ष से प्रेरित होकर राज लुम्बा ने विधवाओं के लिए एक मुहिम शुरू की। 5 साल के कड़े वैश्विक अभियान और भारत सरकार के समर्थन के बाद 21 दिसंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया और पहला आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र विधवा दिवस 23 जून 2011 को मनाया गया।
2: विधवा होने के बाद महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। पति की जमीन संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। समाज में शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। किंतु अब सरकार की ओर से विधवा महिलाओं और उनके बच्चों के भविष्य के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें सबसे पहली योजना है कि विधवा पेंशन योजना, और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं ऐसी 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता, और 80 वर्ष से जो ऊपर है उनकी पेंशन और ज्यादा सरकार दे रही है।
1: बिल्कुल, सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विधवा महिलाओं को मुफ्त व्यवसायिक प्रशिक्षण भी देती है ताकि वे अपना कोई रोजगार शुरू कर सके।
2: महिलाओं को छोटे उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं

0: के तहत कम ब्याज दर और बिना गारंटी के लोन दिया जाता है। यदि किसी विधवा महिला को ससुराल में या परिवार द्वारा संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सहायता केंद्रों पर मुफ्त कानूनी सलाह और वकील भी दिए जाते हैं। विधवा महिला के नाम पर जमीन या मकान की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी में भी विशेष छूट दी जाती है। बच्चों की पढ़ाई न छूटे इसके लिए सरकार छात्रवृत्ति भी देती है। आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज है और जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपके अधिकार क्या क्या हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो अनीता, इस गीत के साथ ही हमारे सभी श्रोताओं से लेते हैं अनुमति कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर से। आज के कार्यक्रम में मैं थी आपकी रेडियो दोस्त नेहा
1: और मैं थी आपके साथ अनीता। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि ये नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्य

0: काल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने सवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है

0: कोसी और बसंती का। आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी, गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर

0: बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
1: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
0: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
1: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।

0: बसंती दीदी, बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
1: अरे
0: दीदी,
1: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
0: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
1: क्या?
0: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
1: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
0: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
1: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
0: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
2: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
3: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
2: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानते?

0: कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ
1: और क्या?
0: है।
2: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
1: घटेगा।
0: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
3: खाली हमारे समझने से क्या होता है?

0: हमारे ही गांव से करो। अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो, चलो
1: चलो
0: चलो,
1: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
2: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, हीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस समय सुबह के 10 बजे हैं।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रांति से। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाजें अमित कुमार और लता मंगेशकर की।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
7: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
6: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
7: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
6: आप कौन?
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
9: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों

0: को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

शोर फिल्म का एक गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

घरौंदा इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ भूपेंद्र सिंह की। अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म का ये गीत।

0: नदियां के पार इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आवाजें हेमलता और जसपाल सिंह की।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे गीत, फिल्म का नाम पापा कहते हैं। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अंतिम प्रस्तुति पाकीज़ा फिल्म से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, तो सुनिए प्यारा सा नगमा और इस गीत के साथ ही दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा को अनुमति। नमस्कार।

0: बड़ी ही प्यारी फिल्म में, बड़ा ही प्यारा गीत अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत में। फिल्म संगीत में आपके साथ यार जी नेहा, हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं पहले एक संदेश और उसके बाद आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारी ना,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे
1: और छोटी
2: ये तुम्हारे नाम,
1: और ये मेरी गुड़िया थी ना। पर दादी
2: हाँ?
1: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो
1: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले।
5: ना पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है।

0: जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का शास्त्रीय संगीत।

शास्त्रीय संगीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11:30 हो चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत में चंद गजलें। पहली गजल आशा भोसले की आवाज में।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें।

0: 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें, तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना गिट बैग।
1: RBI कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: सुगम संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपने सुनी मुकेश की आवाज़ में बेहतरीन गज़ल, भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में और गज़लें आपको सुनवाते हैं।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में आपने गजल सुनी। सुगम संगीत के कार्यक्रम चल रहा है, आप हैं आरजे एकता के साथ। अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन की आवाज़ में इस कार्यक्रम की आखिरी गजल।

हरिहरन की आवाज में ये गजल अपनी चुनी। कार्यक्रम चल रहा था सुगम संगीत का। आइए बापू सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहली आवाज पेपॉन और श्रद्धा मिश्रा की है। शिकारा फिल्म का ये गीत है।

एजेंट विनोद फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का। आतिफ असलम की आवाज़ में एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम रेस है, संगीत प्रीतम का है।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी?
2: हाँ।
1: आ? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
6: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। किस्मत कनेक्शन फिल्म से आपको गीत सुनवाते हैं आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: एबीसीडी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा है। आइए सुनते एक संदेश और उसके बाद सुनवाएंगे आपको फिल्म संगीत में और गीत।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: कोई आपसा फिल्म से आपको एक और गीत सुनवाते हैं, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है।

भेड़िया फिल्म से भी आपने ये बेहतरीन नगमा सुना। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। आप थे आरजे एकता के साथ और अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से और वहां पे हम सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। यमुना जल परियोजना के लिए एमओयू पर राजस्थान और हरियाणा के बीच सहमति बन गई है। आज नई दिल्ली में एमओयू को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री पाटिल ने बताया कि इस एमओयू पर अगले सप्ताह हस्ताक्षर किए जाएंगे।
1: आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। अन्य मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे। इस तरह का अभी आज तय हुआ है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही जल बंटवारे की समस्या समाधान के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिल पाएगा।
2: यमुना के पानी की मांग लंबे समय से हो रही थी और 94 का ये जो फैसला है वो आज बैठ करके हमारे सभी अधिकारियों ने उसको आगे बढ़ाया है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमओए उसका होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से पानी की कमी है और राजस्थान को पानी की आवश्यकता है वो राजस्थान का हिस्से का पानी इसमें मिलेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद माननीय पाटिल साहब को और माननीय हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी धन्यवाद देता हूं।
0: यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा, साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जोधपुर के एम्स और पावटा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने पावटा अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने के मामले में ये दौरा किया है। श्रीमती राठौर ने एम्स में भर्ती दो और पावटा अस्पताल में भर्ती छह प्रसूताओं के स्वास्थ्य और उपचार की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को सभी मरीजों की 24 घंटे निगरानी करने और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों और आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में आवश्यक तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों पर रक्षा पर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 21

0: जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बरसात हो सकती है। हनुमानगढ़ में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और रिमझिम बरसात हुई। वहीं पिछले दिनों से जारी प्री मानसून गतिविधियों से लोगों को चिलचिलाती धूप और लू से राहत मिली है। हालांकि उमस वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर को छोड़कर लगभग सभी जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष प्री मानसून गतिविधियां अच्छी रही हैं। 1 से 21 जून के बीच प्रदेश में सामान्य से 41% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। ये दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को खेलों के माध्यम से फिटनेस, शांति, एकता और भाईचारे के लिए प्रेरित करना है। इस साल की थीम यू कैन डू दिस, लेट्स मूव रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और उभरती प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता की भावना को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सहेलिया री बाड़ी।

0: राम राम नीमा भैसा, राम राम।
1: राम राम अनीता भैसा, राम राम। और हेलिया रिवाड़ी कार्यक्रम होने वाली है, आपानी सभी सखी सहेलिया हाथड़ा ने आपनो
0: राम राम, राम सा। देखो भाई, कार्यक्रम रो टेम व्यो न, चाहे देखो चाहे तावड़ो पड़े, चाहे खेता में ने काम वोन कई भी वो, तो आपने जी सब बेना है, जमकू बहन सीता बहनी सब जो है, ये देखो आपने कार्यक्रम रे महीने उपस्थित वेगी है, सहेलिया रिवाड़ी रे झुमका महीने। और देखो ये भी जाने है कि आ बेना आवेगा, नवीन नवीन भात भात री जानकारी करेगा सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो आनी तावड़ा में आपने सेहत रो तो ध्यान रखनो ही रखनो है, लारे लारे आपने ढांडा चोपर रखनो है। और जटे आपनी जो बेना है खेतीबाड़ी रो भी काम करे, घर रो भी काम करे और घर भी चलावे बेना, तो बेना ने हाथ में पैसों आवे सा, है ना सा। बिना आपानी देखो आजकल तो खुद कमाई भी रही है, देखो हाँ। खेतीबाड़ी में साग वेचीन या दूध दू या और भी कई नरई थका जो काम है जी करीन बिना पयो कमाई रही है। लेकिन यो जो पैसों आपी कमाई रहा, अने पैसा ने सही जगह जमा करनो और वंडो उचित प्रबंधन करनो बहुत ही जरूरी है, ताकि आपने आड़ ऊप में वो काम आई सके और आपने बुढ़ापा रो सहारो वणी सके।
0: बिल्कुल सा। और देखो आपा यही बात कर रहे हैं, हाँ आज आपने बिना रे लारे कि महिला और वित्तीय नियोजन, बजट वनाणो और बचत री आदत नाकनी, हर महीने देखो वेवा वाली जत्री भी कमाई वेवे वंडे हिसाबू खर्चारो हिसाब राखनो, अगला महीना महीने थोड़ी ज़्यादा बचत करनो हीकनो, अपने आयरो जो 20% वे बिने जरूर बचावनो चावे सा।
1: बिल्कुल सा। और यूँ वोचनो चावे कि भाई अगर अणी महीना में आपने जो खर्चा पड़ी हूँ आपने कही है कि थोड़ा अगर 500 रुपया वंचा, तो आपने यूँ होचनो चाहे कि अगले महीने आपी 700 रुपया वंचावा, है नहीं, कोशिश यह रखनी चाहे। और एक यू है कि आपने देखो भगवान नहीं करे कई भी जीवन में कंडे भी कई दुख आवे, पर देखो आप परिवार लेन बेटा हाँ कनाण अचानक आपने कई नुकसान वही जा, बीमारी वही जा, या घनी तेज वर्का आई जा, डूंजा डांजी आई जा, नौकरी छूटी जा, ढंडा चोपा मरी जा, तो अन्य बातें आपने कही है कि 3-6 महीना तक रो खर्चा रे बराबर आपने पया बैंक में वेना या आपन तीरे वेना जरूरी है। और आपने बेना तो जानी रही ना, आप ही जानी रहा, अब बार थोड़ा साल पहले सापी कोरोना में कतरो बेटे घर बेटा खानो पड़ियो सा, है नहीं, तो जन्ने कोड़े हो वरने तो खाधो और नहीं हो जन्ने तो घनी मुसीबत ही। तो अन्य बात है आपने कम से कम 6 महीना खावा जत्रो आपने पयो तो घर में मेनो बहुत ही जरूरी है सा।
0: बिल्कुल। और देखो अणी पया ने देखो सेविंग अकाउंट में या पछे घनी भी प्रकार रा जी भी

0: अपनी बेना है पहली स्थानीय बाजार में जी सामान बेचती ही वना ने राजीविका रे माध्यमों और अन्य मिशन रे माध्यमों भी देश और विदेश में वना राज्य उत्पाद है भी वेची रहा है सा।
1: बिल्कुल रंडे लाला रे देखो डिजिटल मार्केटिंग हूँ और जी ऑनलाइन जुड़ने भी अपने जो है समय यो संयम भी बढ़ाती तकी जा रही हो। डिजिटल सेवा केंद्र और ई गवर्नेंस री अगर बात करा तो देखो गाँव महीने बैंकिंग सरकारी सेवा ई मित्र चलाईने भी ग्रामीण जो है भी स्वयं रा उद्योग धंधा कर रहा है और देखो दो पैसा कमाई रहा है सा।
0: बिल्कुल सा जे भी ई मित्र या डिजिटल जो सेवा केंद्र अगर खोली रखा है तो अना ने गाँव में बैंकिंग रा काम वेरा है साण में पेंशन रो काम वेरो बीमा रो काम वेरो सरकारी योजना रो जो लाभ है वो ही दो गांव में मिली रो ऐसा। तो अपने गांव रा जितना भी दूसरा है वना ने भी अपने जितना भी बुजुर्ग भी है वना ने भी बैंक रे बात है या पेंशन रे बात है या अटी वटी जावारी टापा खावारी जरूरत नहीं है और शेर आड़ी जावारी जरूरत नहीं वना रो काम वटे रो वटे वही जैसा।
1: बिल्कुल तो देखो निमा वैसा कार्यक्रम में और भी वाता चीता जानकारियां करांगा ना आपको तो होना एक राजस्थानी लोकगीत
0: बिल्कुल होना सा।

0: सुंदर बोरी है हुणे यो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत। और देखो अबे आप ही बात करा है कि आपने खेती में जो भी उत्पादन में वे है नी सा, तो वो जो उत्पादन में वे वनों खा वना प्रसंस्करण करी वना ने आप लंबा टेमय तक राख सका। देखो कतरी बार कही वे वे कि खेतीवाड़ी में आपने नरीहारी पैदावार वही जावे है नी सा, तो नरीहारी पैदावार वही जावे तो बाजार में अगर वेचवा जावा तो वनो मूल्य भी दाम भी आपने कम मिले, और नी वेचा तो घरे पड़ी पड़ी वह फसल खराब हुई जा। तो अंडे बातें आपने कही है कि जी भी अपनी फसला है वना ने लंबा टेम तक राखवारे बातें, और वनो पैसा वरना जो मूल्य है वो बढ़ावा रहे बात है, अगर वने प्रसंस्करण करी अगर आप वेचांगा तो वनो अपने दाम बहुत ही बढ़िया मिलेगा सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हो अंडे बातें। देखो जी भी अपना ग्रामीण क्षेत्रों जुड़े तक जी भी किसान भाई है वनारे परिवार बातें देखो भाई आय रो बेहतरीन जरियो भी है लाड़े खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन ने भी हिदो वेचवारी बजाय बाजार में ने वेचा तो देखो कीमता तो मिल ही से और उत्पाद जो है वी भी खराब नहीं वेगा। कम लागत वाला जी खाद्य प्रसंस्करण है अगर वनारी बात करा तो देखो अचार है मुरब्बा है चटनियाँ है अनारी मांग तो है देखो वर भर वनी तक ही रहे, और अनारा जी भी अपने कच्चा सामान काम आवे वी वर भर तक साल अपने बाजार में उपलब्ध नहीं वेवे सा
0: नहीं वेवे, क्योंकि देखो अबार जैसे बात करा तो आ केरिया है भी अबारी सही रही अबे केरिया रो आम अचार मुरब्बा ये आप अबारी बने सका और साल बनाना रो आनंद ले सका खाई सका। अंडे अलावा अचार मुरब्बा चटनियाँ ये जो चीज़ा है अनारी विदेशा में भी मांग है देश में भी अपने जितने भी होटला है जितना भी अपने है वटे अनारी बहुत ही ज़्यादा मांग है। अंडे अलावा जैसे अपनी बिना घरे रही बनावे जैसे पापड़ है मंगोड़ी है आलू री चिप्स है और ये कई वेवे कि हाँ तू मने था का घर में वेवे तो स्वाद में तो बहुत ही बढ़िया वेवे, और कही है कि ये अपने स्वास्थ्य बातें भी ठीक वेवे है नी सा। तो अंडे बातें ये कही है कि हाथों हाथ बिक जावे। अब अपने पापड़िया की बात करें मक्का री पापड़िया की बात तो ये भी अगर कोई भी बेन अगर बनावे तो बनारे भी हाथों हाथ विक जावे।
1: बिल्कुल अंडे लाला रे अगर मसाला री बात करें तो देखो हल्दी है मरचा है धनो है गरम मसाला है चायरा मसाला है ये भी अगर घरे वणी ने पीस ने बनाजी हो बढ़िया पैकिंग करने बाजार में वेचा तो देखो शुद्धता भी वणी तकी रहे और साफ सुथरो काम अगर करने मिले तो देखो आजकल लोग जो है दो पया वत्ता खर्च करने और हो बढ़िया चीजा लेनो पसंद करे सा।
0: बिल्कुल सा अणी सरी को देखो अबारा अपने गेहूँ भी पिया है तो गहूँ ने अगर आप वेचांगा तो दाम कम बने।

0: मिलेगा, है नहीं सा? तो गहूँ आप ही दड़े वणे सका, हूजी वणे सका, आटो वणे सका, मैदो वणे सका, और चना है तो अणव चणव आपने बेसन वणे सका, सत्तू वणे सका, मूंगरी दाल, चणा की दाल, उड़द री, तुअर री दाल, मतलब बाजार अगर आप ही लावा तो भी कई पालिश करी थकी आवे, और आप ही अगर वणे वेचांगा तो भी वना पालिश री वेवे, तो भी आपने स्वास्थ्य वाते बढ़िया वेवे, तो वी भी आपने बिना रहे यो है कि हाथों हाथ विकवारो हो दो है सा। बिल्कुल
1: बिल्कुल। और मौसमी फलारो जिस तरह शरबत वे गयो है, जैम है, और जूस वे गयो है, आंवला रो रस है, आंवला रे मुरब्बा री बात की दी, टमाटर रो सॉस है, लाल लारे अमचूर रो पाउडर है, सूखो लहसुन है, प्याज रो पाउडर है, ये सब चीज़ा भी अगर आप टेम रहता जनी टेम पे सस्ता मिले, सस्ता दाम महीने मल रहा है, वनदान अगर वनाई ने वेचा तो देखो दो पैसा रो फायदो वे वैसा।
0: बिल्कुल सा। और देखो अणी तरीका हुआ अगर आप ही अणा ने दूसरी तरीका प्रसंस्करण वेचांगा तो अणारो मूल्य भी बढ़ जाएगा, और खेती रो सीजन खत्म वेवा पे भी ये आपने प्रसंस्कृत जो उत्पाद है ये साल भर तक आपने घर में और आपने बाजार में वणिया थका रहेगा, और यो काम आपने ग्रामीण बहना घर बैठा भी कर सके। और अंडे अलावा जैसे आप ही आभार थोड़ी देर पहले बात की थी कि डिजिटल साक्षरता, तो आपने बहना सबरे पास मोबाइल ऐसा है नहीं सा, तो भी आपने घर में बनावे जैसे कोई मसाला अगर पीसी रही है तो मसाला ने गट्टी में पीसता थका बतावे, अचार नाकी रही है तो अचार ने वणाता थका, बिल्कुल बिल्कुल हाइजेनिक तरीका हूँ वणाता थका कि भाई बिल्कुल शुद्धता हूँ वन रो है यो अटे, तो अड़ी तरीका वीडियो बनाई अगर आपने मोबाइल हूँ और नाखेगा तो वे सके कि वणा ने बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिल जावे और घर बैठा आप धंधो चल जावे।
1: बिल्कुल सा। तो देखो भाई छोटी छोटी बात तो घनी काम रही है, अंडे लाल लारे अगर सहायता की बात करा तो देखो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो है एंटरप्राइजेज नाबार्ड की तरफ आजीविका अटूबी भी अपनी बेना जो है लोन ले सके है।
0: बिल्कुल सा। और देखो सा वाताचीत और करांगा लेकिन आपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और हुना यो प्यारो सो राजस्थानी गीत।
1: हाँ सा।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आगे आगे कोतल घुड़ लो, हुणे आयो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत लारे लारे हुणे आ संदेश। और अबे आपणे बिना रे वाते, आपणे वाते और आपणे गांव रे वाते, आपणे बाल बच्चा रे वाते, ढांडा चोपा रे वाते, खेती बाड़ी रे वाते, सरकार नरी हरी आपणे योजना बनावे है सा आपणे हाउ रे वाते। तो वणा योजना में एक या योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना सा, तो अन्य जानकारी आज अपनी बेना ने आप देवा सा।
5: बिल्कुल, या जो योजना है या देखो भारत सरकार रेड़ियों ग्रामीण विकास मंत्रालय रे द्वारा शुरू की दी गई योजना है। अंडे मुख्य उद्देश्य री बात करा तो देखो गाँव रे महीने मूल स्वभाव ने बनाए रखता तका वटे शहरी सुविधा उपलब्ध करावनो, ताकि जितना भी ग्रामीण भाई बहन है वे क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों शहरारी तरफ एवं वाला पलायन ने रोको जाई सके। और उद्देश्य री बात करा तो देखो स्मार्ट विलेज कलस्तर विकास जणी महीने ऐसा समूह करना है जणी मैंने शेरा जैसी सुविधा मल सके सा।
4: बिल्कुल सा, और जो गांवों और शहर की तरफ रोजगार रे वाते पलायन वेरो है, तो वणा ने गांव में ही आधुनिक सुविधाएं सब सारी सुविधाएं जी की शहरा में वे भी वणा ने वटे गांव में दी जावे, ताकि वे शहरा की तरफ वणा रो पलायन रुक सके। और अन्य लाड़े लाड़े आर्थिक विकास रे वाते भी स्थानीय स्तर पर, यानी कि जटे भी अपना गांव में है वटे जितना भी ग्रामीण युवा किसान भाई है या और भी कोई युवा मोटिया रहे जी किसानी नहीं भी करे और करे भी है, तो वणा सब ने कौशल विकास हिकावे ऐसा, और कौशल विकास और प्रशिक्षण थी वणा ने वटे इस वणा रे रोजगार री और आर्थिक विकास री सुविधा वे ऐसा।
5: बिल्कुल, और देखो शहरी ग्रामीण विभाजन ने कम करनो, सुविधा और बुनियादी ढांचा रे अंतर ने भी कम करनो है। अगर अणी कलस्तर कई अंडी बात करा तो देखो ये मिशन पूरा देश रे महीने काम करे है। कलस्तर भौगोलिक रूपों एक दूसरा सटिया तक नरे सारा गाँव रो समूह वेवे, जणी महीने 25,000 से 50,000 तक आबादी वेवे। मरुस्थली पहाड़िया जनजातियाँ अणा क्षेत्र महीने 5,000 से 15,000 तक री आबादी वेवे है, जिन्हें आप कलस्तर केवा हासा।
4: और क्लस्टर में जी सुविधा मिले भी देखो कौशल विकास रो प्रशिक्षण दियो जावे, वणियो आर्थिक गतिविधियां ने बढ़ावो मिले, डिजिटल साक्षरता और गांव में इलेक्ट्रिक सेवा केंद्र री स्थापना की जावे, और 24 घंटा पाइपों साफ पानी री आपूर्ति की जावे सा।
5: बिल्कुल, देखो सड़कारा नेटवर्क सार्वजनिक परिवहन री सुविधा वेवे, घरेलू और सार्वजनिक कचरा रो प्रबंधन वेवे, बेहतर स्कूली शिक्षा भी वडे मले, बेहतर स्वास्थ्य री सुविधा भी वेवे, लाल लारे रोड लाइटा और निरंतर विद्युत रो भी उपभोग वास्ते निरंतर आती थकी रहे।
4: बिल्कुल सा, और देखो या तो ही योजना और यह बहुत ही बढ़िया योजना है, अपने और अपने गांव ने बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और देखो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और हुणा यो राजस्थानी गीत।

0: देखो अबे, अपने जो बिना है वणाने बहुत ही अच्छी जानकारी देवा कि फरवरी 2026 हूँ HVP मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत की दी है। और यो जो टीको है अपने महिला में विवाह वालों कैंसर में सर्वाइकल कैंसर रे वाते यो लागी रो है। और यो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस रे नाम रे संक्रमण फैले है। और यो जो टीको है ये छोटी बच्चिया रे लागी रो है सा।
1: बिल्कुल। और ये टीको देखो 93% लेने 100% तक सर्वाइकल कैंसर की जटे आप बात करें हमने खतरा ने कम कर देवे। भारत में ने देखो गार्डल से वैक्सीन रो उपयोग की दो जी रो है। लाल लारी ये टीका जो है 9-14 साल की लड़कियाँ रे डॉक्टरी सलाह पे जरूर लगवाना चाहिए। ये टीको बिल्कुल मुफ्त है, माता पिता की सहमति भी अने मैंने वीणी जावे सा।
0: और बिल्कुल सा। और सर्वाइकल कैंसर की जटे बात करा तो सर्वाइकल कैंसर आपनी जी बेना है वना रे गर्भाशय रो जो मुंह वेवे वणी जगह यो कैंसर वेवे। और यो कैंसर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेवे अणु बांझपन भी वेवे कतरे टाइम यो वेवे कि बेना री अण में मौत भी वही जावे।
1: बिल्कुल
0: तो अन्य वाते यो टीको अन्य इस वाते बनायो गयो है कि आप ही अणु वंची सका और आपनी छोरिया ने भी जतरी भी आपनी बाल बच्चिया है वनाने आप ही वंचे सका। अंडे बातें अपनी बेना ने जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। और जन्ने भी 9-14 साल की लड़कियां हैं तो भी अपने डॉक्टर रे पास जटे भी आप रे घर रे बड़े प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है या डॉक्टर है वहाँ जाइन मिलो और सलाह लो। और आपकी सहमति वेगा आपकी सहमति देन पचे यो टीको लगवाओ सा।
1: बिल्कुल। और देख हाँ
0: तो देखो अपनी जानकारी लारे लारे अबे घड़ी रियाड़ी नाला तो अपने कार्यक्रम रो टेम भी हो तो चला सा।
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम।
1: सा।

सहेलियरी बाड़ी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: बरेली की बर्फी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा है। आइए सुनते हैं एक संदेश और उसके बाद फिर से ये चलेंगे आपको फिल्मी तरानों की ओर।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मोहब्बती फिल्म से एक और आपको गीत सुनवाते हैं उद्भव और प्रीथा मजुमदार की आवाजों में।

यंगिस्तान फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। अर्को मुखर्जी की आवाज़ में एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना, आइए अब आपको सुनवाते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है प्रहार। इस रणनीति को एक लोकप्रिय शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत के सक्रिय रक्षा तंत्र के प्रमुख स्तंभों का प्रतिनिधित्व करता है। पी रोकथाम, भारतीय नागरिकों और उनके हितों की रक्षा के लिए आतंकवादी हमले को रोकना। आर खतरनाक के संभावित और अनुदैर्य प्रतिक्रिया। ए संपूर्ण सरकार के नजरिए से समग्रता हासिल करने के लिए। एच लोकतंत्र को कम करने के लिए लोकतंत्र विधि के शासन पर आधारित प्रक्रिया। ए कट्टरपंथ सहित उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को कम करना। ए अलाइनिंग चुनौती का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना और उन्हें आकार देना। आर संपूर्ण समाज के माध्यम से बिकवाली बहाली और सीटें। गैंगवार की रोकथाम भारत एक सक्रिय खुफिया आधारित हथियार रोधी दृष्टिकोण को अपनाता है जो मध्य और राज्य के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सिक्योरिटी ब्यूरो के संबंध मल्टी एजेंसी सेंटर MFC और संयुक्त कार्यबल ऑन एजेंसी द्वारा संचालित है। डिजिटल सुरक्षा कानून प्रवर्तन एजेंसी भर्ती प्रचार और संचार के लिए इंटरनेट के समर्थों का सक्रिय रूप से सामना करता है, साथ ही ओवरग्राउंड वेरिएबल OGW सपोर्ट नेटवर्क को विखंडित करता है। समन्वित अभियान अवैध मछली पकड़ने के लिए सिंडिकेट और अपराधियों के लिए बीच उभरती गठजोड़ को लक्ष्य बनाते और विधिक ढांचे के माध्यम से टेरर फंडिंग आतंकी मामले को बातचीत करते हैं। प्रतिक्रिया की बात करें तो स्थानीय पुलिस प्राइमरी फर्स्ट रिस्पोंडर प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में कार्य करती है जिसमें विशेष राज्य आतंक रोधी सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस सेना CAPF द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करता है जो बड़े पैमाने पर हमले के दौरान विशिष्ट व्यवधान प्रदान करता है, राज्य इकाइयों के लिए क्षमता निर्माण का नेतृत्व करता है। संचालन प्रक्रिया की बात करें SOP तो मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से समन्वय को सुव्यवस्थित किया गया है जो वास्तविक समय में खुफिया जानकारी का प्रसार और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। घटना के राष्ट्रीय समुद्र तट अभिकरण NIA राज्य पुलिस के खिलाफ सामूहिक कार्य करता है ताकि दोष सिद्धि की उच्च स्तर द्वारा सुनिश्चित की जाए जिसका उद्देश्य भविष्य के उद्देश्य के आधार पर एक दृढ़ कानूनी प्लास्टर स्थापित करना है। का एकीकरण यह भारत के सुरक्षा परिदृश्य में मानकीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वैश्वीकरण योग्य पेशेवर को प्रशिक्षण के लिए शामिल करने के लिए अनिवार्य है। मुख्य एजेंसी जैसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और CAPF बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण का नेतृत्व करते हैं जबकि NSG राज्य इकाइयां शहरी युद्ध से जुड़े विशेष कौशल प्रदान करते हैं। राज्य प्रायोजित भागीदारी भारत में मराठा की योजना बनाई गई और उन्हें परिणाम देने वाले जगडी सहयोगियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व वाली कंपनी की सीमा पार से निरंतर समर्थन दिया गया है। वैश्विक नरसंहार संपर्क अलकायदा और IS जैसे ग्रुप स्लीपर के माध्यम से हिंसा भड़काने का। उपयुक्त इंद्रधनुष को कम करना कठोर

सुरक्षा के रूप में सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण पर केंद्रित है। यह बहु हितधारक डी रेडिकलाइजेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से उग्रवाद के मूल लक्षणों को चित्रित करता है, जिसमें कैथोलिक नेता बहुत ही सुंदर छोड़ा जा सके, नीति रेडिकल में बच्चों के प्रति उच्चतम प्रतिक्रिया को अपनाया जा सके। ये थी आज की विकास चर्चा और अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता

0: पार्टी का साथ। और मूठ जैसे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
2: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
2: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज डडमरो मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षा

0: शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारत

0: ये पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम नीमा वैसा, राम राम।
1: राम राम अनीता वैसा, राम राम। और कृषि जगत कार्यक्रम होने वाला आपने सब किसान भाइयों और बहनों ने आपनों
0: राम राम सा। देखो भाई, कार्यक्रम रो टेम व्यो और अपना सब किसान भाई बहन जो है कार्यक्रम में उपस्थित हो गया है। और देखो भाई, आवे भी क्यों नहीं अटे आप भांत भांत री जानकारी करा, चाहे मौसम री जानकारी वो, खेती बाड़ी री जानकारी वो, चाहे अपना कोई भी कृषि वैज्ञानिक कार्यक्रम में पधारे, जो भी नवी नवी और भांत भांत री जानकारियां साझा करे तो आप सब किसान भाइयों ने बतावा। हाँ सा, लाल लाल। देखो आज आप किसान री बात में बात करांगा कि खरीफ जी अबार खरीफ री फसल अपने किसान भाई बहन बोई रहा है, वणी में पोषण रो प्रबंधन कणी तरीकों करनो है।
1: बिल्कुल सा, या जा आपने खरीफ री जा फसल है या जून अक्टूबर यानी कि अबार जो महीनो चाली रो है, वणी मानसून री अनिश्चितता। देखो तो अबार तक तो आपने देखो वर्षा ही जावे है नहीं, है नहीं सा? तो अड़ी साल तो आपने मानसून आयो ही नहीं है, और अड़ने अलावा भी देखो तापमान भी ज़्यादा है, और पचे एकदम भारी बारिश आई जा, जन्ने कारण कई वेवे कि आपना पोषण तत्व जी वेवे आपने मिट्टी में वणु तेजी नुकसान वेवे।
0: बिल्कुल
1: आणी बातें खरीफ री जितनी भी फसला है, जैसे धान है, मक्का है, बाजरा है, सोयाबीन, मूंग और कपास, अणारी बंपर पैदावार लेवारे वाते और वैज्ञानिक संतुलित पोषण प्रबंधन बहुत ही जरूरी है सर।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखो खरीफ की फसलारी आप बात कर रहे हैं, हाँ जने मैंने धान, मक्की, बाजरो, सोयाबीन, मूंग और कपास अनारी बम्पर पैदावार वास्ते और पोषण प्रबंधन रे अगर सिद्धांतारी भी बात करा तो देखो खरीफ फसलारे महीने खाद और उर्वरक देती टाइम पे अपने किसान भाई जो है वणा ने चारा सिद्धांत रो पालन करना चाहे। जने मैंने देखो सब पहली बात अगर करा तो सही स्त्रोत वेना चाहे, फसल री जरूरत रे अनुसार देखो सही तो उर्वरक वेना चाहे, जिस तरह यूरिया कतरी लेनी है, DAP कतरो लेनो है, और SSP रो जो वो चुनाव कर रहा है वो भी सही तरीका वेणो चावे सा।
1: अने अलावा मात्रा भी सही वेणी चावे, मिट्टी रो परीक्षण करीन वंडे आधार पर आपने जे भी आपी पोषक तत्व देवा वणा ने टाकणा चावे, और ठीक टेम यानी कि सही समय जेवे वणा ने आपने वावणिया कर लेनी चावे, ववैरे टाइम आपने और कल्ला फूटता समय आपने आता समय वण पर आपने पोषक तत्व देना बहुत ही जरूरी है सर।
0: बिल्कुल सही कह रहा हो। देखो कल्ला फूटती दान और फूल आती टेम पे भी पोषक तत्व नाक देना चाहे, लाल लारे सही स्थान रो भी चयन करनो है, उर्वरका ने देखो हिद्या सतह पे फेंकवारी बजाय पौधारी जड़ारे भड़े या पचे घेराई में नाकनो चाहे। लाल लारे एकीकृत पोषण प्रबंधन री बात करा तो देखो केवल रासायनिक खाद पे निर्भर रही ने मिट्टी री सेहत तो है जो खराब भी जावे, अणी वाते रासायनिक जैविक और जैव उर्वरका रे समन्वित मिश्रण रो उपयोग करने पचे यो जो एकीकृत पोषण प्रबंधन में वे यो खेती महीने करनो चावे सा।
1: और जड़ा जैविक खाद री बात करा तो गोबर री खाद या केचोरी जो खाद वेवे वरना ववई रे 15-20 टन पेली या 8-10 टन प्रति हेक्टर गोबर री खाद या पचे 2-3 टन केचुअरी खाद मिट्टी में आपने अच्छी तरीकों मिले देनी चाहिए।
0: बिल्कुल देखो अणी बात पे और आगे बात करांगा कि खरीफ री फसला महीने पोषण प्रबंधन रो कणा कणा वातारो ध्यान रखनो है ना। आपको तो हुना एक राजस्थानी लोकगीत।
1: बिल्कुल हुनाओ सा।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: तो भाई सारा वीरा जयपुर जाजो सा हुणे बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत और लाल लारे हुणिया संदेश। और अणु पहली आप ही किसान भाइयों बात करी रहा कि खरीफ री फसला में पोषण प्रबंधन किस तरह करना चाहे।
4: बिल्कुल, और जटे देखो आप पहली खरीफ री फसला में पोषण प्रबंधन री बात कर रहा हाँ, तो जैविक खाद री भी बात की दी। तो आप बतायो कि देखो ढाई 3 टन जो है केंचुआ री खाद मिट्टी में हऊ तरीका मलई देनी चाहे। अंडे लाल लारे देखो या

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो अनिता पैसा
0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो अनिता पैसा यो तो हुणियो बहुत ही बढ़िया गीत और लाडला रे हुणिया संदेश। और अब ये जानकारी देवा अपने किसान भाया ने कि देखो वर्का छटारा धन आई गया, अपने खेती बाड़ी रो टेम भी आई गयो है, तो अणा में जो आप ही उर्वरक ना कहाँ अपने अच्छी पैदार रे बात है, तो वर्णे बात है अपने वर्णा रो संतुलित उपयोग किस तरह करना चाहे।
4: बिल्कुल, और उर्वरक संतुलित उपयोग री बात करानी माँ वैसा, तो देखो आधुनिक

0: जो परीक्षण करने उर्वरक नाखनो है, केवल यूरिया पे निर्भर नहीं रहनो है, फास्फोरस और पोटाश भी अनदेखी करनी है। एक दाणी पूरो नाइट्रोजन नाक देवे, जरूरत ज्यादा उर्वरक भी नाक देवे, सूक्ष्म पोषक तत्वारी कमी ने नजरअंदाज कर लेवे और फसल री अवस्था के अनुसार पोषण ने बदलेनी है। तो देखो भाई, अने महीने अगर ई दूसरे देखा देखी ई वातारो अगर ई वाता ध्यान में राखेगा तो पछे वनारे फसला ने नुकसान वेगा, लेकिन अगर भी कुछ वाता ऐसी है जना ने अगर ध्यान रखेगा तो देखो मिट्टी रे परीक्षण रे आधार पे उर्वरक री मात्रा तय करनी चाहे। नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश रो संतुलित उपयोग करनो है, नाइट्रोजन ने विभाजित खुराक में देनो है, फास्फोरस ने जड़ारे भड़े देनो है, सूक्ष्म पोषक तत्वारी टेम पे पूर्ति करनी है, लाड़लारे जैविक स्त्रोता ने खेत में मलावनो है और सही समय सही विधि और सही मात्रा में अगर लेगा तो पछे ज्यादा ज्यादा लाभ मिलेगा। अणी वाते देखो कम लागत सही पोषण स्वास्थ्य मिट्टी और ज्यादा लाभ यो टिकाऊ और लाभकारी खेती रो असली आधार है सा।
1: बिल्कुल सा।
0: और देखो भाई कार्यक्रम में और भी बातचीत करांगा, लेकिन आपको तो होना है राजस्थानी लोकगीत।
1: बिल्कुल होना सा।

0: तो निमा भाई सा देखो यो तो आपा सुंदर सोमन भावन गीत हुणियो और लाल लारे घड़ी राड़ी नारा तो अपने कार्यक्रम रो टेम भी वेग्यो है तो आपा चाला सा
1: राम राम सा।
2: कृषि जगत ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के उद्घाटन समारोह पर श्री शाह ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस।
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट थ्रेट्स फॉर अस।
0: अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक अभूतपूर्व खेल क्रांति का साक्षी बन रहा है, जो देश के खिलाड़ियों को सशक्त बना रही है और प्रत्येक नागरिक को खेलों को जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान के ओलंपिक मूल्यों का जश्न मना रहा है, जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रही जॉर्डन को 2-1 से मात दी। न्यूयॉर्क में ग्रुप आई मुकाबले में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में जगह पक्की की। फ्रांस ने सुबह फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई मैच में इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चली। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के

जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हमेशा की तरह आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आप हमारे FM चैनल यानी FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकेंगे। तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, युववाणी के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मेघना और मेरे साथ हैं
1: हर्षित।
0: आज के कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे उभरता भारत में भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की, मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ट्विन टाउन ऑफ कोडनही, ट्रैवल डायरीज में नेशनल चंबल गड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा कई प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की जीवन यात्रा प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही रहेंगे आज का इतिहास, खेल जगत और शेयर बाजार की ताज़ा जानकारी। आइए कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं।

0: की, यानी जहाज निर्माण उद्योग की, जो आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।
1: दोस्तों, भारत एक समुद्री राष्ट्र है। लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे एवं मध्यम बंदरगाह भारत को समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाते हैं। यही कारण है कि देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार मात्रा के आधार पर समुद्री मार्गों से होता है।
0: मेघना, लेकिन एक समय ऐसा था जब जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत की भागीदारी जो है काफ़ी सीमित थी। आज स्थिति बदल रही है। सरकार ने क्षेत्र में कई नई दिशाएं लाने की सोची है और कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल हर्षित, भारत सरकार ने शिप बिल्डिंग सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लगभग 69,725 करोड़ रुपए के निवेश और योजनाओं की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत को केवल जहाज खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि जहाज बनाने वाला वैश्विक केंद्र बनाना है।
0: बिल्कुल इसी दिशा में नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन और 25,000 करोड़ रुपए के मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जैसी पहले शुरू की गई है। साथ ही ग्रीन शिप्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।
1: दोस्तों, भारत ने अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2030 तक वैश्विक शिप बिल्डिंग बाजार में 5% हिस्सेदारी हासिल करना और वर्ष 2047 तक दुनिया के शीर्ष 5 शिप बिल्डिंग देशों में अपना होना भारत का लक्ष्य है।
0: यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि आज भारत के पास मजबूत औद्योगिक आधार, कुशल युवा शक्ति और तेजी से विकसित हो रहा है समुद्री ढांचा भी काफी हद तक मौजूद है।
1: भारत के प्रमुख शिपयार्ड मंझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स तथा गोवा शिपयार्ड आज अत्याधुनिक जहाजों का निर्माण कर रहे हैं। यही संस्थान भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए आधुनिक युद्धपोत भी बना रहे हैं।
0: स्वदेशी विमान वाहक पोत जैसे INS विक्रांत इसका सबसे शानदार उदाहरण है। यह केवल एक उद्योगपति नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी कौशल और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
1: हर्षित, भारत की एक और बड़ी प्राथमिकता है ग्रीन शिपिंग।
0: बिल्कुल,
1: पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम कर रही है और भारत भी इस अभियान में पीछे नहीं है।
0: बिल्कुल, सरकार ऐसे जीरो एमिशन और लो कार्बन जहाज़ों के निर्माण को बढ़ावा दे रही है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि भारत वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण भागीदार बनेगा।
1: इसके अलावा भारत दुनिया के अग्रणी शिप बिल्डिंग देशों, विशेष रूप से जापान और दक्षिण कोरिया के साथ तकनीकी सहयोग और साझेदारी को भी बढ़ावा दे रहा है।
0: पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के माध्यम से भी भारत आधुनिक तकनीक, बेहतर डिजाइन और वैश्विक विशेषता को अपने उद्योग से जोड़ रहा है। इससे भारतीय शिपयार्ड्स की क्षमता जो है और गुणवत्ता जो है दोनों में ही काफी सुधार होगा।
1: भारत ने एक महत्वाकांक्षी नेशनल फ्लीट
0: एक्विजिशन
1: एक्विजिशन
0: प्लान
1: प्लान
0: भी
1: भी
0: शुरू
1: शुरू
0: किया है।
1: किया
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल मेघना,
1: इसके अंतर्गत 437 नए जहाजों के अधिग्रहण और निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसमें 2.5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है।
0: बिल्कुल इसका सीधा अर्थ यह है कि अधिक उत्पादन, अधिक रोजगार और अधिक आर्थिक गतिविधियां। जब जहाज बनेंगे तो स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, लॉजिस्टिक्स और अनेक सहायक उद्योगों को भी गति मिलेगी।
1: और यही कारण है कि विशेषज्ञ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि कई उद्योगों को आगे बढ़ाने वाला इंजन मानते हैं।
0: और यदि युवाओं की बात करें तो यह क्षेत्र अवसरों से काफ़ी एक विशाल समुद्र है अवसरों का। मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स डिज़ाइन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं लगातार बढ़ रही है।
1: आज का युवा यदि कौशल और नवाचार के साथ आगे बढ़े, तो वह भारत को विश्व की अग्रणी समुद्री शक्तियों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
0: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत भी इसी विश्वास के साथ समुद्री विकास की नई यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।
1: जहाज किनारे पर सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन उसका निर्माण किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं किया जाता। भारत भी अब सुरक्षित दायरे से निकलकर वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

0: किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं पर नहीं बल्कि उन लहरों पर भी दिखाई देती है जहां उसके जहाज दुनिया को उसकी क्षमता का परिचय देते हैं। आज भारत उन्हीं लहरों पर आत्मनिर्भरता, तकनीक और विकास की नई कहानी लिख रहा है।
1: और यही कहानी है आज के उभरता भारत की।
0: आज हम बात करेंगे भारत की तेजी से उभरती शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री।

0: कल्पना कीजिए कि आप किसी गांव में पहुंचे और अचानक आपको लगे कि एक ही चेहरा बार बार आपके सामने आ रहा है। पहले स्कूल में, फिर सड़क पर, फिर बाजार में, कई राह में भी आपको दिख जाएगा। क्या यह मैं संयोग होगा या किसी रहस्य की शुरुआत है?
1: दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। आज मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे गांव में जिसे लोग ट्विन टाउन यानी जुड़वा बच्चों का गांव कहते हैं, कोडिनी।
0: केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित कोडिनी पहली नज़र में सामान्य लगता है, लेकिन जहाँ जुड़वा बच्चों की संख्या इतनी अधिक है कि इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रखा है।
1: करीब 2000 परिवारों वाले इस गांव में 400 से अधिक जुड़वा जोड़े दर्ज किए गए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यहाँ की लगभग 20% आबादी किसी न किसी रूप में जुड़वा है।
0: भारत में सामान्य जुड़वा जन्म की दर जो है काफ़ी कम है, लेकिन कोडिनी में यह दर जो है 42 से 45 जुड़वा जन्म प्रति 1,000 प्रसव तक है, जो राष्ट्रीय औसत के कई गुना अधिक होती है।
1: यहाँ का सबसे पुराना ज्ञात जुड़वा जोड़ा जो है वो 1949 में जन्मा था, लेकिन 1990 के दशक के बाद जुड़वा बच्चों की संख्या में और तेजी से वृद्धि देखी गई।
0: सवाल यह है कि ऐसा क्या हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई विशेष जीन, पानी में कोई तत्व या स्थानीय खान पान का कारण है?
1: जवाब खोजने के लिए भारत, ब्रिटेन और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने डीएनए, बाल और लार के नमूने लिए, लेकिन आज तक कोई ठोस कारण नहीं मिल पाया है।
0: कुछ विशेषज्ञों ने अनुवांशिक कारणों तो कुछ पर्यावरणीय कारणों को और संकेत किया है, लेकिन किसी सिद्धांत की निर्णायक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है।
1: रहस्य यह भी है कि कोडनी की कुछ महिलाएं जब दूसरे शहरों में जाकर बसी, तब भी उन्हें वहां जुड़वा बच्चों का ही जन्म हुआ।
0: कोडिनी में ट्विन्स एंड किन्स एसोसिएशन नामक संगठन भी है। दुनिया में नाइजीरिया का इग्बो ओरा और ब्राज़ील का कैंडिडो गोडोई भी प्रसिद्ध है, लेकिन एशिया में कोडिनी खास है।
1: विज्ञान ने अंतरिक्ष और समुद्र की गहराइयां तो माप ली हैं, लेकिन कोडिनी को यह रहस्य आज भी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है।
0: शायद यही कारण है कि कोडिनी केवल एक गांव नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा छोड़ा गया एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर दुनिया आज भी खोज रही है।

0: अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी नदी है जहां आज भी गंगा डॉल्फिन छलांग लगाती है, दुर्लभ घड़ियाल धूप सेकते दिखाई देते हैं और सैकड़ों प्रवासी पक्षी आसमान को रंगों से भर देते हैं, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, और आज ट्रैवल डायरीज में हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे ही एक अनोखी जगह पर, नेशनल चंबल सेंचुरी। यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि भारत के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में से एक है।
0: दोस्तों, चंबल नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में गिना जाता है। यही वजह है कि यहाँ का परिस्थिति तंत्र बेहद काफ़ी समृद्ध है। वर्ष 1979 में स्थापित यह अभयारण्य लगभग 5,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों को जोड़ता है।
1: और आपको बता दें, यहाँ सिर्फ घड़ियाल ही नहीं, यहाँ आपको गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ, इंडियन ऑटर्स, 8 से अधिक दुर्लभ कछुआ प्रजातियां और 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां भी देखने को मिल सकती हैं।
0: अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो यह जगह किसी सपने से कम नहीं। सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षी यहां डेरा डालते हैं। नदी किनारे बैठकर उन्हें देखना अपने आप में ही एक अनोखा अनुभव है।
1: हर्षित, चंबल की एक और दिलचस्प बात है, जहां भारत की कई नदियां प्रदूषण की चुनौती से जूझ रही हैं, वहीं चंबल नदी अपेक्षाकृत साफ और निर्मल बनी हुई है। यही कारण है कि यहां की जीव विविधता आज भी सुरक्षित है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर रोमांच की बात करें तो यहाँ की बोट सफारी सबसे बड़ा आकर्षण है। नाव धीरे धीरे नदी के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है और अचानक से रेत के किनारे आपको कई घड़ियाल धूप सेकते हुए दिखाई देते हैं।
1: सोचिए, एक तरफ शांत नदी, दूसरी तरफ सुनहरी रेत, ऊपर उड़ते दुर्लभ पक्षी और सामने प्रकृति का एक ऐसा दृश्य जो किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसा लगे। यही है चंबल का जादू।
0: यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और वन्य जीवों को देखने की संभावना जो है काफ़ी अधिक होती है।
1: अब सवाल ये है कि इस अद्भुत अभयारण्य तक पहुँचा कैसे जाए?
0: अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डे जो है वो ग्वालियर और आगरा हैं। इन शहरों से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से अभयारण्य तक पहुंचा जा सकता है।
1: रेल मार्ग की बात करें तो धौलपुर, मुरैना और इटावा प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। ये देश के कई बड़े शहरों से सीधे जुड़े हुए हैं।
0: और यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं तो दिल्ली, जयपुर, आगरा, ग्वालियर, कोटा और आसपास के कई सारे शहरों से राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। खासकर युवाओं के लिए रोड ट्रिप का अनुभव यहां और भी रोमांचक बन जाता है।
1: यानी चाहे आप फ्लाइट से आएं, ट्रेन से या अपनी गाड़ी से, नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पहुँचना काफ़ी आसान है।
0: यात्रा का असली आनंद सिर्फ एक नई जगह देखने में नहीं बल्कि उन कहानियों को महसूस करने में

0: हैं जो प्रकृति हमें सुनाती है।
1: और नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी ही एक कहानी है, संरक्षण, रोमांच और प्रकृति के अद्भुत संतुलन की कहानी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जब कोई डॉक्टर रात भर जाकर मरीज का इलाज करता है, तो कोई शिक्षक भविष्य की पीढ़ी को गढ़ता है, कोई पुलिसकर्मी त्योहारों पर भी अपनी ड्यूटी निभाता है, और कोई सफाईकर्मी सुबह होने से पहले शहर को स्वच्छ बनाता है, तब कहीं जाकर समाज सुचारू रूप से चलता है।
4: और ऐसे ही लाखों लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 23 जून को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है।
3: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिवस की शुरुआत कब और क्यों हुई?
4: आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को पारित किए गए प्रस्ताव के माध्यम से 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे घोषित किया था, और इसके बाद वर्ष 2003 से इसे विश्व भर में मनाया जाने लगा।
3: इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोक सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देना, और युवाओं को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में आने के लिए भी प्रेरित करना।
4: इनकी भूमिका का महत्व हमें विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान देखने को मिला। जब पूरी दुनिया कठिन दौर से गुजर रही थी, तब स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा बल और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग लगातार जनता की सेवा में लगे रहे।
3: दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDGs जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छ जल, लैंगिक समानता और गरीबी उन्मूलन, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावी लोक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
4: और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष इस अवसर पर उन संस्थानों और कर्मचारियों को भी सम्मानित करता है जिन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य किए हों। इसे UN पब्लिक सर्विस अवार्ड के नाम से जाना जाता है।
3: भारत जैसे विशाल देश में लोक सेवा का महत्व और भी बढ़ जाता है। देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, और इतनी बड़ी जनसंख्या तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं पहुंचाने में लाखों लोक सेवक प्रतिदिन योगदान देते हैं।
4: आज तकनीक ने भी लोक सेवा को नई दिशा दी है। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल भुगतान प्रणाली और जन सेवा केंद्र जैसी पहले नागरिकों को तेज और पारदर्शी सेवाएँ उपलब्ध करा रही हैं।
3: सेवा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को महान और किसी राष्ट्र को मजबूत बनाती है।
4: लोक सेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प है। यही भावना समाज को आगे बढ़ाती है और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाती है।
3: आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर हम उन सभी लोगों को सलाम करते हैं जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा में जुटे हैं।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: समाज की प्रगति का सही आकलन इस बात से होता है कि वह अपने सबसे कमजोर और अपेक्षित वर्गों के प्रति कितना संवेदनशील है। आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो अपने जीवन साथी को खोने के बाद अनेक सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करती हैं।
4: हर वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विधवा महिलाओं की समस्याओं, अधिकारों और उनके सम्मानपूर्ण जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
3: दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस घोषित किया और 2011 में पहली बार इसे वैश्विक स्तर पर भी मनाया गया।
4: 23 जून की तारीख भी विशेष महत्व रखती है। यह लोम्बा फाउंडेशन की संस्थापक चीरी ब्लेयर के परिवार से जुड़ी एक स्मृति तिथि है। इस संस्था ने विधवाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया था।
3: सशक्त समाज वही है जहां हर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो।
4: और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हमें संवेदनशीलता, समानता और सामाजिक

0: का संदेश देता है।
1: अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर हम सभी विधवा महिलाओं को साहस, धैर्य और संघर्ष को नमन करते हैं।
0: तो दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं सिनेमा की ओर और उसमें रूबरू करवाते हैं एक हॉलीवुड और एक बॉलीवुड के सितारों से। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, जो कि एक अमेरिकी सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। वे अपनी सच्ची, गहरी और बिना बनावटी अभिनय शैली के लिए जानी जाती हैं और वे अक्सर साधारण लेकिन बेहद मजबूत महिलाओं के किरदार निभाई हैं।
1: कुछ कलाकार अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट ऐसी ही एक कलाकार हैं।
0: इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो फार्गो, जिसमें भूमिका के लिए उन्हें पहला एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर मिला, थ्री बिलबोर्ड्स आउटलाइन एबिंग मिसूरी, इसके लिए उन्हें दूसरा ऑस्कर मिला, और नोमैडलैंड, और जिसके लिए इन्हें तीसरा ऑस्कर मिला था।
1: अब इनकी उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस का एकेडमी अवार्ड जीतने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से शामिल है। एमी, टोनी और ऑस्कर तीनों बड़े पुरस्कार जीतने वाली कलाकार हैं।
0: अभिनय की खासियत की बात करें तो किरदार को ये बहुत स्वाभाविक तरीके से निभाती हैं। मजबूत, स्वतंत्र और वास्तविक महिलाओं की भूमिका इन्होंने निभाई है और कम संवादों में भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती हैं।
1: उन्होंने अपने करियर में ग्लैमरस भूमिकाओं से ज़्यादा माननीय और वास्तविक कहानियों को चुना।
0: अब आपको लिए चलते हैं राज बब्बर, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता जो हैं उनकी ओर। वे अपनी गंभीर अभिनय शैली, दमदार आवाज़ और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं और इनका जन्म आज ही यानी 23 जून 1952 में टुंडला में हुआ।
1: इनके फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। वे रोमांटिक, गंभीर और सामाजिक विषयों वाली फिल्मों में काफ़ी नज़र आए।
0: इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो निकाह, आज की आवाज़, उमराव जहाँ, इंसाफ का तराजू और भीगी पलके जैसी फिल्म इनमें शामिल हैं, और उन्होंने हिंदी के साथ साथ पंजाबी फिल्मों और थिएटर में भी काम किया।
1: अभिनय की खासियत इनकी बात करें तो गंभीर और भावनात्मक किरदारों को काफ़ी मजबूत पकड़ते थे। संवाद बोलने की जो प्रभावशाली अंदाज था इनका काफ़ी अच्छा था। सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं इन्होंने।
0: और बाद में ये राजनीति से जुड़ गए थे। वे सांसद भी रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भी रहे। वे 3 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और वे उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद का कार्यभार भी संभाल चुके हैं।
1: राज बब्बर उन कलाकारों में से गिने जाते हैं जिन्होंने सिनेमा और समाज दोनों ही क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं राज बब्बर की ही एक फिल्म का गीत।

0: लीजा मैरी कॉरिंगटन दुनिया की सबसे सफल महिला कैनो स्प्रिंट खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्हें न्यूजीलैंड की सबसे महान ओलंपिक खिलाड़ियों में गिना जाता है।
1: समुद्र की लहरों से खेलना सीखने वाली एक लड़की एक दिन दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर सोने का अवार्ड जीतकर अपने देश का नाम रोशन करेगी। यह कहानी है लीजा कैरिंगटन की।
0: बचपन में वे तैराकी और सिर्फ लाइफ सेविंग जैसी गतिविधियों में जुड़ी थी। बाद में उन्होंने काइकिंग को अपनाया और इसमें असाधारण प्रतिभा दिखाई।
1: 2012 समर ओलंपिक्स में उन्होंने K1 200 मीटर्स कयाक स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 2016 समर ओलंपिक्स और बाद के ओलंपिक्स में भी शानदार प्रदर्शन किए। उनके नाम कई ओलंपिक्स पदक और विश्व चैंपियनशिप खिताब भी शामिल है।
0: तेजी और तकनीक का अद्भुत मेल, मानसिक मजबूती, लगातार मेहनत और अनुशासन, ये कुछ खासियत हैं लीजा की।
1: लीजा कैरिंगटन की कहानी बताती है कि सफलता सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि लगातार अभ्यास और धैर्य और जुनून से मिलती है।
0: तो दोस्तों, अब कल्पना कीजिए, हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ, घने जंगल और उन जंगलों पर निर्भर छोटे छोटे गांव। लेकिन एक दिन खबर आती है कि इन जंगलों को काटने के लिए बाहर की कंपनियां आ रही हैं। तब एक व्यक्ति खड़ा होता है, हथियार लेकर नहीं बल्कि अहिंसा और हिम्मत लेकर। वह व्यक्ति थे चंदी प्रसाद भट्ट।
1: इनका जन्म 23 जून 1934 में गोपेश्वर चमोली उत्तराखंड में हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट ने युवावस्था में गांधीवादी विचारों से प्रेरणा ली। उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ों के लोगों की जो असली ताकत है उनके जंगलों, पानी और ज़मीन में है। क्यों प्रेरणा, तुम भी ऐसा ही सोचती हो?
0: बिल्कुल, 1964 में उन्होंने दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल DGSM की स्थापना की। इसका उद्देश्य था स्थानीय लोगों को रोजगार देना और जंगलों के संसाधनों का उपयोग इस तरह करना कि प्रकृति का नुकसान न हो।
1: 1970 के दशकों में हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई बढ़ने लगी थी। गांव वालों का जीवन जंगलों पर निर्भर था, ईंधन, चारा और पानी के लिए काफ़ी निर्भर रहते थे।
0: तो 1973 में चंदी प्रसाद भट्ट जो हैं, इनके नेतृत्व में लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए एक बहुत अनोखा तरीका अपनाया, पेड़ों से चिपक जाना। यानी जब भी लकड़हारे पेड़ काटने आया करते थे तो लोग पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे और ये कहा करते थे कि पहले आप हमें काटो फिर हम पेड़ काटने देंगे, और यही बना था चिपको आंदोलन।
1: इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि जंगल उनके रोज़मर्रा के जीवन का आधार थे। रैणी गांव की घटना में महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए आगे बढ़कर विरोध किया।
0: अगर हम इनकी सम्मानों की बात करें, उनके पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए इन्हें कई सम्मान मिले, जैसे रेमन मैक्सेसे अवार्ड 1982 में, पद्म भूषण 2005 में
1: और गांधी पीस प्राइस अवार्ड 2013 में।

0: दोस्तों, प्रदीप कुमार बनर्जी यानी पीके बनर्जी का जन्म भी आज ही के दिन यानी 23 जून को 1936 जलपाईगुड़ी बंगाल में हुआ था और इनका निधन 20 मार्च 2020 कोलकाता में।
1: पीके बनर्जी भारतीय फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से गिने जाते थे। वे उस दौर के सितारे थे जब भारतीय फुटबॉल अपने स्वर्णिम युग में था। वे एक बेहतरीन फॉरवर्ड, राइट विंगर, स्ट्राइकर और बाद में सफल कोच बने।
0: इनके करियर की बात करें तो उन्होंने बहुत ही कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया और 15 वर्ष की उम्र में संतोष ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 1995 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया और वे 1956 और 1960 के ओलंपिक में भारत के लिए खेले थे।
1: उनके करियर का सबसे बड़ा पद जो आया 1962 एशियन गेम्स, जो जहां भारत ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता। पीके बनर्जी उस टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे।
0: 1960 रोम ओलंपिक में उन्होंने भारत की कप्तानी की ओर मजबूत टीम फ्रांस के खिलाफ गोल कर मैच को 1-1 की बराबरी पर लाया था और उनकी

0: जोड़ी चुन्नी गोस्वामी और तुलसीदास बलराम के साथ भारतीय फुटबॉल की प्रसिद्ध तिकड़ी मानी जाती है।
1: संन्यास के बाद उन्होंने कोचिंग में भी नाम बनाया। वे कई बड़े क्लबों और भारतीय टीम से जुड़े रहे और युवा खिलाड़ियों को काफी आगे तक बढ़ाया।
0: फीफा ने 2004 में उन्हें कंटिन्यूअल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। उन्हें भारतीय फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है। और पीके बनर्जी सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, वे भारतीय फुटबॉल के उस दौर की पहचाने थे जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक सकता है।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं अब स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहले क्रिकेट टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण आयरलैंड और इंग्लैंड की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 सीरीज में भारत की टीम 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू की चर्चा जोरों पर है। एथलेटिक्स की बात करें तो एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत की महिला 100 मीटर्स टीम में चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों, अब राजस्थान के स्पोर्ट्स की बात करते हैं। बैडमिंटन से न्यूज़ है कि जयपुर के SMS स्टेडियम में आज से RD बहेती मेमोरियल जयपुर डिस्ट्रिक्ट ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 शुरू हो गई है। तो दोस्तों, ये थी स्पोर्ट्स अपडेट। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। सेंसेक्स आज 76,200.68 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 आज 23,824.10 अंक पर बंद हुआ और एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 94.74 के बराबर रहा। तो दोस्तों, यहीं तक था हमारा सफ़र। मैं था आपका रेडियो दोस्त हर्षित, और मेरे साथ थी
0: मेघना।

ये था आज का युवावाणी कार्यक्रम, जिसे आपने सुना आकाशवाणी उदयपुर से। आपने ट्यून किया था मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़। शाम के 6 बजे अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग

0: शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज़्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब आपको लिए चलें गीत संगीत की ओर। ये पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं कसूर फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं।

जी हाँ, जब मोहब्बत हो जाया करती है तो दिल को संभालना वाकई में मुश्किल हो जाता है ना? इसका जवाब ना आपके पास है ना हमारे पास। फिलहाल तो आप गाने एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर पर। अगला गीत है राज फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें।

0: जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागा ये कैसा एहसास।

0: ये पहला प्यार होता है इतना रूमानी है कि हम ना चाहते हुए भी दिलबर की ओर ऐसे खींचे चले जाते हैं कि दिल को कोई खबर ही नहीं रहती। ये था संघर्ष फिल्म का गाना जिसे अभी आपने सुना, सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज़ थी।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये भाग यहीं समाप्त होता है। ये था इम्तिहान फिल्म का गीत, कुमार सानू और बीला की आवाज़ें थी। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी जयपुर अजमेर से, जहां से पहले आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद ज़िले की चिट्ठी और फिर सुनिएगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई, राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ, किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आज नई दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परियोजना के एमओयू से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अंतिम रूप दिया। साथ ही किशाऊ बांध परियोजना पर भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर श्री पाटिल ने कहा कि यमुना जल परियोजना को दीर्घकालिक नजरिए के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पानी को पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे वितरण व्यवस्था व्यापक होगी। उन्होंने कहा कि केशाऊ बांध परियोजना के बारे में 6 राज्यों के मुद्दों का समाधान हुआ है, जल्दी ही एमओयू भी किया जाएगा।
2: दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, दोनों ने जो हरियाणा

0: से पानी जो सरप्लस वाटर
1: आज उसका नया MOA करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो MOU का उनको एक्सचेंज करेंगे।
2: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना शेखावटी क्षेत्र के लिए अहम है, जल्द से जल्द इसे धरातल पर लाया जाएगा। वहीं श्री सैनी ने कहा कि बैठक में वर्षा के पानी को सहेज कर राजस्थान पहुंचाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज करौली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पांचना संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और अन्य पंच पटेलों की उपस्थिति में समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहे। उधर पांचना बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का महापड़ाव आज भी जारी रहा। वहीं धरने के कारण कुछ समय तक रेल यातायात प्रभावित रहा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जयपुर में आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में रियायती दरों पर जमीन आवंटन के प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जोधपुर के उम्मेद अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसूताओं, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर उपचार व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती राठौर ने कहा कि हर मरीज को बेहतर और सुरक्षित इलाज उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन को चिकित्सालय के प्रति भरोसा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल SOP की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
3: अभी इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो, यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। लोगों का इतना फेथ है तभी 25,000 लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
2: गौरतलब है कि पावटा अस्पताल में सिजेरियन के बाद प्रभावित प्रसूताओं के इलाज और सेहत की सतत निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट देने के लिए मेडिकल बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद आज जयपुर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने शहर में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच की। इस कार्रवाई में 14 कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों को सील किया गया। साथ ही 24 कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी नियमों की अनुपालना के लिए नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और फायर NOC से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवार CUET पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। NTA के अनुसार इस साल मई महीने में हुई प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नेफेड के नीलामी पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने अगले 2 सालों में दलहन की खरीद सीधे किसानों से खरीदने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने

0: किसानों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए फसलों को सुरक्षित रखने और आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। अलनीनो संकट के संभावित असर से निपटने के लिए आज उन्होंने कृषि मंत्रियों और मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों को समय पर स्पष्ट सलाह पहुंचाने की बात कही।
2: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक हो वह हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
0: राज्य में आज कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून गतिविधियों का असर देखने को मिला। सीकर, झुंझुनू और करौली में दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार छा गया, साथ ही बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू में कई स्थानों पर करीब आधा घंटे तेज पानी बरसा। उधर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़, राजियासर और अन्य कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। भरतपुर में भी धूल भरी आंधी चली, उसके बाद कुछ देर हल्की बरसात हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज, वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 जून तक जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार हैं। दक्षिणी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी देखी जा सकती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि देश की महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी के प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने निवास पर डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का त्याग और राष्ट्र प्रथम का संकल्प देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज भरतपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा के लिए समर्पित किया।
3: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है जिसने संघर्ष का रास्ता चुनकर के एक विचार को स्थापित किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा

0: सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ, किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। जून का महीना अब अपने अंतिम चरण में है। इसी के साथ जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पिछले दिनों कई क्षेत्रों में हुई बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद कई जगह मौसम सुहावना हो गया, इससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारियां तेज कर दी हैं। खेतों की जुताई, बीज और खाद की व्यवस्था का काम चल रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा है। विभागीय अधिकारियों को किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जल संरक्षण, जनसेवा, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों को लेकर जिले में अनेक गतिविधि आयोजित की गयी। आइए भीलवाड़ा जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में इस चिट्ठी में जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लाभ जिले के किसानों को भी मिला। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। किसानों ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली राशि खेती किसानी के कामों में सहायक साबित हो रही है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, पशुपालन, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने हुरुड़ा पंचायत समिति के खारी का लांबा ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और पशुपालकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी। अगले दिन गाँव में भ्रमण कर लोगों से सीधे बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर विद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय शुरू करने, खेल मैदान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े कामों की घोषणाएं की गईं। ग्रामीणों ने अपनी आवश्यकताओं और सुझावों से प्रशासन को अवगत कराया। जल संरक्षण को लेकर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहाँ जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। लोगों को जल बचाने और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। भीलवाड़ा शहर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टा वितरण, पेंशन संबंधी काम, प्रमाण पत्र, चिकित्सा सेवाएं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार इन शिविरों की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आमजन को राहत मिली है। परिवहन के क्षेत्र में भी भीलवाड़ा जिले को हाल ही में नई सुविधाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत जिले में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन बसों के माध्यम से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। ई बसों के चलाए जाने से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा की सुविधा मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जिले में प्रशासन और लोगों की ओर से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी मानसून में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से लगभग 35 लाख पौधे लगाने की योजना पर चर्चा की गई है। वन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियां हुई। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने

0: आमजन को योजनाओं की जानकारी दी तथा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सू पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, लोगों का इतना फेथ है, तभी 25-25 हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
1: ध्यान जोग है कि पावटा सफा खाना माए सिजेरियन रे पाछे प्रभावित प्रसूता मारे इलाज और सेहत री सतत निगरानी राखी जा रही है। जिला प्रशासन वाणी स्वास्थ्य स्थिति माथे अपडेट देने खातिर मेडिकल बुलेटिन जारी करने रा हुकुम दिया है। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड रे पाछे आज जयपुर माए फायर सेफ्टी व्यवस्था मारी जांच खातिर खास अभियान चलायो गयो। नगर निगम और पुलिस री टीमा ने शहर माए कोचिंग संस्थावां और लाइब्रेरी रा अग्नि सुरक्षा इंतजामारी जांच करी। इन कार्रवाई माए 14 कोचिंग संस्थावां और पुस्तकालय ने सील करयो गयो, साथ ही 24 कोचिंग सेंटरा ने फायर सेफ्टी नियमारी अनुपालना खातिर नोटिस जारी कराया गया। अभियान रे चालता नगर निगम पुलिस और प्रशासन री संयुक्त टीमा ने संस्थाना माए फायर सेफ्टी उपकरण आपातकालीन निकास मार्ग और फायर एनओसी सु जुड़िया दस्तावेजारी जांच करी। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 स्नातक दाखिला रा नतीजा घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नतीजा जारी करता थका बतायो कि उम्मीदवार CUET पोर्टल माथे आपरा स्कोर कार्ड देख सके है। एनटीए रे मुजब इन बरस मई महीना माए प्रवेश परीक्षा माए 11 लाख सु 32 पढ़ेसरी भेड़ा व्याहा। ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रिया हो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो नवी दिल्ली माए शुभारंभ करयो। इन मौके माथे श्री शाह कयो कि काश्तकारा ने सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। वणा कयो कि सहकारिता मंत्रालय आवता 2 वर्षा माए दलहन री खरीद सीधे काश्तकारा सु खरीदने रो लखस राख्यो है। वणा किसाना री भागीदारी ने मजबूत करने खातिर खरीद कामा माए बिचौलिया री भूमिका ने खत्म करने रो हेलो करयो।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सु बिरखारी आशंका ने देखता थका फसला ने सुरक्षित रखने और जरूरी कृषि प्रबंधन उपाया माथे खासा दिशा निर्देश दिया है। अलनीनो संकट रे संभावित असर सु निपटने खातिर आज वे कृषि मंत्रियां और मौसम महकमारा अहलकारा खातिर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। वणा कयो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश रा सगला जिला खातिर आकस्मिक योजनावां तैयार कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य सरकारा सु आ योजनावां ने प्रभावी रूप सु लागू करने री अरज करी है। साथ ही वणा वैज्ञानिका सु काश्तकारा ने बकत माथे सही सलाह पहुंचाने री बात कही है।
3: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक हो वह हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी भी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे, लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
1: और अब मौसम। राज्य माए आज कुछ एक थोड़ा माथे प्री मानसून गतिविधियां रो असर देखण ने मिल्यो। सीकर और करौली माए दोपहरा पाछे मौसम बदल्यो और तेज हवावां रे साथे धूल रो गुबार छाग्यो, साथ ही बूंदाबांदी हुई। वटीने श्रीगंगानगर जिले रा सूरतगढ़, राजियासर और दूजा कई इलाका माए तेज हवावां साथे बरसात हुई। भरतपुर माए भी धूल भरी आंधी चाली, इनरे पाछे कई देर हल्की बिरखा हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी समेत आसे पासे रा खेतरा माए भी हवावां रे साथ बादलारी आवाजावी देखण ने मिली। मौसम महकमा रे मुजब आ 7 जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज, वठीने 12 जिला माए येलो अलर्ट जारी करयो गयो है। 27 जून ताई जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग माए कठई कठई गरज चमक रे साथ हल्की बिरखा हो सके है। इनरे चालता कई जगह माथे झोंकेदार हवावां चालने रा भी आसार है। दक्षिण राजस्थान माए बरसात री गतिविधियां माए कमी देखी जा सके है। भारतीय जनसंग्रह संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूजा

0: कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करी वाने सोशल मीडिया पोस्ट माए श्री मोदी लिखियो कि महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी रा प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी ने मातृभूमि री सेवा खातिर प्रेरित करता रहेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आपरे निवास माथे डॉक्टर मुखर्जी रा फोटो माथे फूल चढ़ार वाने नमन करो। मुख्यमंत्री कहो कि डॉक्टर मुखर्जी रो त्याग और राष्ट्र प्रथम रो संकल्प देश सेवा रे मार्ग माथे चालने खातिर प्रेरित करतो रहेला। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भरतपुर माए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रे बलिदान दिवस माथे राखीजा कार्यक्रम माए भाग लियो। इन मौके श्री शेखावत कहो कि वणा आपरो सगलो जीवन सेवा खातिर समर्पित करो।
1: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुनकर के एक विचार को स्थापित किया।
0: कोटपुतली खेतर्रा बनार गांव रे कने आज एक सड़क हादसा माए एक मीनक हर टाबरी री मौत वेगी। हादसो तेज रफ्तार डंपर री चपेट माए आने सूयो। घटना रे पाछे खेतर माए शोक री लहर दौड़गी। युवा मामला और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि भारत अभूतपूर्व खेल क्रांति रो साक्षी बन रियो है। सोशल मीडिया पोस्ट माए आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस माथे आप रे संदेश माए डॉक्टर मांडविया कहो कि देश री खेल क्रांति खिलाड़ियां ने सशक्त बना रही है और हर नागरिक ने खेला ने जीवन शैली रे रूप माए अपनावन खातिर बधाओ दे रही है। वणा कहो कि देश उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान रे ओलंपिक मूल्यां रो जश्न मना रियो है, जको दुनिया भर माए लाखों लोगों ने प्रेरित करे है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातिर 31 जुलाई ताई आवेदन किया जा सके है। सगला नामांकन ऑनलाइन लिया जा रहा है। यह पुरस्कार 15 सू 18 बरस आयु वर्गरा टाबरा रे असाधारण साहस और सृजनात्मकता ने समर्पित है। आने 6 श्रेणिया माए दिया जावे है। राष्ट्रपति कानी सू यह पुरस्कार हर बरस नवी दिल्ली माए आयोजित खास जलसा माए प्रदान किया जावे। जलसा माए आयोजन वीर बाल दिवस रे मौके माथे 26 दिसंबर ने करो जावे है। और आखिर माए खास खबरां एकर फेरू सुनो। यमुना जल परियोजनावां रे क्रियान्वयन ने लेर नवी दिल्ली माए अहम बैठक भी। राजस्थान माए जल प्रबंधन ने मजबूती मिलेला। जयपुर माए कोचिंग संस्थाना माए अग्नि सुरक्षा व्यवस्थावां ने लेर विशेष अभियान चलाया गया। नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो शुभारंभ। काश्तकारां सू सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू कम बारिश री आशंका ने देखता थका आवश्यक कृषि प्रबंधन उपाया माथे व्यापक दिशा निर्देश दिया। इन रे साथे ही प्रादेशिक समाचारों ऊ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम अनीता भाई सर, राम राम।
1: राम राम नंदू भाई, राम राम
0: खेती और घर हुणवा वाला हंगले किसान भाई बहना ने भी आपनों
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा।
1: सा।
0: देखो अनीता भाई सा, आणि कार्यक्रम में आप ही आवा सा और आपने किसान भाई बहना वाते भात भातरी जानकारी लेना आवा सा।
1: हाँ सा।
0: और देखो आज सबू पहली आप ही चौपाल री बात में बात करा कि देखो उर्वरक जो है यानी कि खाद वगैरह जो है वनारो आपने संतुलित रूप में उपयोग करना चाहे सा, क्योंकि आप ही जाना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जट देखो ज़्यादातर जनसंख्या या तो प्रत्यक्ष रूपों या अप्रत्यक्ष रूपों खेती पर निर्भर करे ऐसा, और खेती रो उत्पादन बढ़ावा में उर्वरका री महत्वपूर्ण भूमिका वेवे, और पौधा री वृद्धि और विकास रे वाते आवश्यक पोषक तत्व री पूर्ति भी उर्वरक द्वारा वेवे। लेकिन केवल अधिक उत्पादन रे बढ़ावा रे वाते उर्वरक डालना इस उत्पादन बढ़ावा रो उपाय नहीं है। यदि उर्वरका रो संतुलित उपयोग और वैज्ञानिक तरीकों आप उपयोग नहीं करांगा तो अपनी भूमि री उत्पादन क्षमता खत्म भी जाएगा सा। और अणि उत्पादक रो अगर आप संतुलित उपयोग करा तो देखो

0: भूमि री उर्वरता भी बन रही रहे और उत्पादन भी बढ़तो रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो आपनों तो आपने किसान भाई बहनों ने यही कहना है कि उर्वरका रो संतुलित उपयोग जो है वर्तमान समय री महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऐसा
1: बिल्कुल। और उर्वरक और संतुलित उपयोग की बात कर रहे हैं तो अंडे प्रबंधन रो मतलब है कि देखो पौधा ने जरूर जितना भी 17 प्रकार का पोषक तत्व है जना में ने देखो द्वितीयक और सूक्ष्म ने प्राकृतिक और रासायनिक स्त्रोत तारे माध्यम सही संतुलन में देनो। ज़्यादा पैदावार लालसा में केवल नाइट्रोजन यूरिया या पे डीएपी रो

0: तो अनीता भाई सर यो हुणियो आप ही राजस्थानी लोगी और कार्यक्रम में देखो आप ही आगे बढ़ा तो मौसम री जानकारी जो है अपने किसान भाई बहना वास्ते घनी महत्वपूर्ण वेवे, क्योंकि देखो मौसम री जानकारी रे आधार पर अपना जितना भी कृषि कार्य जो है अपना किसान भाई बहन करे। और कतरी दाण आप ही देखा कि मौसम री जानकारी रे अभाव में देखो किसान भाई बहना ने कतरो ही मौसम री वजह नुकसान भी फसला में वही जावे सा। तो अबे
1: बिल्कुल
0: देखो जटे मौसम री बात करा तो देखो आवा वाला टाइम में जरी बात करा तो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना के आधार पर आगामी दिनों में 1-2 मिलीमीटर बारिश वेवारी संभावना है। हवारी गति री जटे बात करा तो देखो 3-5 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगू दक्षिण पश्चिम चालेगा सा। अधिकतम तापमान री जटे बात करा तो देखो 35-38 और न्यूनतम 25-26 डिग्री रेवारी संभावना है। लारे लारे देखो अपनी सापेक्ष आर्द्रता की बात करा तो देखो अधिकतम 25-29 और न्यूनतम 46-55% तक जो है सापेक्ष आर्द्रता रेवारी संभावना है सा।
1: तो नंदू भाई देखो, या तो आप मौसम री बात की दी और अबे आवा वाला दना महीने आपने जो खेती बाड़ी रे वास्ते किसान भाई ने बतावा कि देखो खरीफ फिर फसला री बुआई रे वास्ते खेत री तैयारी रो काम जो है अणी टाइम पे पूरो कर लेनो है। खेता री घेरी जुताई करने, वना ने समतल बनाना है, वर्षा जल संरक्षण रे वास्ते मेड़बंदियाँ करनी है, खेता में हवो हड़ी तकी गोबर री खाद या पचे कंपोस्ट मिले ने मिट्टी री उर्वरता बढ़ावनी है, बुआई रे वास्ते उन्नत किस्म रा बीज उर्वरक और जत्रा भी दूसरा आवश्यक कृषि आदान रही है व्यवस्था पेलों कर लेनी है सा।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अबे देखो जवार री बात करा तो खेतरी अच्छी तैयारी करी इन मिट्टी ने भुरभुरी बनाणो है और वर्षा रे बाद पर्याप्त नमी वेवा पर जवार री बुआई आपने किसान भाई बहन करे सा। प्रमाणित बीज रो उपयोग आपने करनो है। बुआई यूं पहली बीज ने जो है अनुशंसित जाबी फफूंदनाशी जैव उपचार वण्यू करनो है और बीज उपचार करीनी इस पछे आपने बुआई करनी है सा।
1: मूंग री बात करें तो देखो, मूंग री फसला में पीस शीरा मोजेक रोग री रोकथाम रे वाते डाई मिथ्योएट 30 cc 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मलाइन छिड़काव करना है। और मक्के री बात करें तो देखो, बुआई रे वाते खेत में पर्याप्त नमी वेवा पे प्रमाणित बीजारो उपयोग करना है और बीज उपचार करने बुआई करनी चाहे, उचित दूरी भी बनाए रखनी चाहे, खरपतवार नियंत्रण और कीट निगरानी टेम टेम पे करनी है। उन्नत किस्म री बात करें तो देखो, प्रताप QPM1, HQPM1, HQPM5, PEHM2 और प्रताप शंकर मक्की 1, Bio 96 37 और Bio 96 81, नवजोत प्रताप मक्की 3 और प्रताप मक्की 9, ENDI उन्नत किस्म है। अगर ये किसान भाई काम में लेगा तो देखो हऊ पैदावार मिलेगा सा।
0: बिल्कुल अनीता भाई साहब। अब आप ही सोयाबीन री बात करा तो देखो सोयाबीन री बुआई रे टाइम पे खेत में पर्याप्त नमी राखे किसान भाई बहन और प्रमाणित बीज रो उपयोग करे। बुआई हूँ पहली बीज उपचार करनो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा सा। उन्नत किस्म री बात करा तो देखो सोयाबीन री उन्नत किस्म है प्रताप सोया 1, प्रताप रात सोया 2, NRC 37, JS 335, JS 71, 05, JS 95, 60 सा।
1: बिल्कुल। और टमाटर की बात करें तो देखो, अणी टाइम पे टमाटर की पौध बना

0: तो अनीता भाई सा यूं हुण्यो, आप ही राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम में देखो आप ही आगे बढ़ा तो रोज कणी न कणी योजना रे बारे में आपने किसान भाई बहना ने जानकारी दासा और कई न कई योजना जो है सरकार आपने किसान लोगारी भलाई और सामान्य जन व्यक्ति रे बाते लाती रे वैसा। और सरकार रो उद्देश्य यो इस वेवे की देखो योजना रो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने लोगारी भलाई वे वैसा। और
1: बिल्कुल
0: आज आप ही देखो प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की जानकारी लाया हाँ सा।
1: बिल्कुल, ये देखो प्रधानमंत्री प्रणाम योजना या भारत सरकार द्वारा जून 2023 में शुरू की दी गई एक अनूठी पहल है। अंडो मुख्य उद्देश्य देखो रासायनिक उर्वरक ज़्यादा प्रयोग ने कम करनो, वैकल्पिक जैविक और प्राकृतिक खादा ने बढ़ावो देनो, ताकि कहिए कि भूमि मिट्टी रे स्वास्थ्य ने उदार वे सके हैं।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो अनीता भाई साहब कि देखो अणि योजना रे तहत कणी भी राज्य है या संघ शासित प्रदेश द्वारा कणी विशेष वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकारी जी खपत है वणी में पिछले 3 वर्षा रे औसत खपत री तुलना में अगर वणा कमी कर दी थी है या वंचाई थकी कि उर्वरक पे जब भी सब्सिडी है वह 50% अनुदान रे रूप में वणी संघ शासित प्रदेश ने या राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दी जावे सा।
1: बिल्कुल, राज्य और संघ शासित प्रदेश अणि अनुदान रो उपयोग राज्य महीने लोगारे लाभ रे वास्ते कर सके, जणी महीने अपना किसान भाई भी शामिल है। यो कार्यक्रम देखो कृषि पद्धतियां में जरूरी बदलाव रो संकेत भी देवे, जो देश री दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा ने सुनिश्चित करवा में और मिट्टी रे जो स्वास्थ्य रे महत्व ने पहचान है ऐसा।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देखो अणि योजना रे तहत देखो अलग अलग फायदा जो है लोगों ने मिल रहा है ऐसा। और अंडे अंतर्गत देखो मुख्य उद्देश्य की बात करा तो देखो रासायनिक उर्वरक का जो ज़्यादा उपयोग वेरो है तो वन्य कम करना अंडो एक उद्देश्य है। दूसरों जैविक और प्राकृतिक खेती ने बढ़ावा देना भी अणि योजना रो एक उद्देश्य है ऐसा।
1: बिल्कुल, अणियों मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता ने भी बनाए रखियो जा सके, पर्यावरण संरक्षण ने प्रोत्साहित कर सका, किसानों ने टिकाऊ कृषि पद्धति और प्रेरित भी करना अंडो उद्देश्य है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देखो प्रिय

0: प्रणाम योजना की आप बात कर रहा हाँ सा, और अंडे तहत देखो उर्वरक सब्सिडी पर सरकारी जो व्यय है वो अबारू अणी टाइम पे ज़्यादा व्यय है, तो अणी योजना रहे लावर उद्देश्य यह है कि वहीं उर्वरक सब्सिडी ने थोड़ो कम करनो सा।
1: बिल्कुल, और कृषि उत्पादन ने दीर्घकालीन रूपों स्थिर बनाए रखनो है। लाडला रानी योजना की जरूरत क्यों पड़े कि देखो भाई अपने मिट्टी की उर्वरता में जो जो लांबा टेमू कमी आती जा रही है, सूक्ष्म पोषक तत्वारी कमी आती जा रही है, जल प्रदूषण में बढ़वार व्यती तकी जा रही है, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी वही रही है और पर्यावरण जो है असंतुलित वही रो है, अणी बातें ई सब जी योजना है अणा ने लायो जा रही है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो योजना की प्रमुख विशेषता की बात करा तो देखो अणी योजना के अंतर्गत जो है राज्य ने प्रोत्साहन मिल रो है। यह योजना सीधे किसाना ने धनराशि देवारे बजाय राज्य ने प्रोत्साहित कर रही है। जो राज्य रासायनिक उर्वरक की जो खपत है वन्ने कम करवा में सफल वेगा वणा ने जो केंद्र सरकार विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है सा।
1: बिल्कुल, वैकल्पिक उर्वरक ने बढ़ावो दे रही है और योजना के तहत जैव उर्वरक, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और दूसरा जी भी प्राकृतिक पोषक स्त्रोत उपयोग ने प्रोत्साहित कीधो जा रही है सा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहा हो ना लारे लारे। देखो टिकाऊ कृषि विकास में भी बढ़ोतरी हो रही है। अणी योजना के तहत अणी विकास विकसित करवा में सहायक भी मिल रही है और भविष्य में भी भूमि रो उत्पादकता में बढ़ावा करवा वाते अणी में प्रोत्साहन मिल रो है सा।
1: बिल्कुल, और अणि रासायनिक उर्वरक का सीमित उपयोग जल वायु और मिट्टी प्रदूषण में कमी वही रही है। लाडला रे अपने किसान भाइयों ने भी नरोई लाभ वही रो है, मिट्टी री गुणवत्ता में उधार वही रो है, जैविक और प्राकृतिक उर्वरक का उपयोग मिट्टी रे महीने जो है मंडी संरचना और उर्वरता बेहतर व्यती जा रही है।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहा हो ना लारे लारे। किसानों ने यो भी लाभ मिल रहा है कि उत्पादन लागत ने कमी वही रही है, क्योंकि देखो रासायनिक उर्वरक जो है किसान भाई बहन ज़्यादा इस्तेमाल करता तो बनारो खर्चो ज़्यादा हुए तो, लेकिन अबे वहीं पे लागत बंडी वजू कम वही रही है सा।
1: और बिल्कुल देखो, जैविक और संतुलित पोषण प्राप्त करवा फसलारी गुणवत्ता भी ज़्यादा बढ़ती तकी जा रही है, भूमि री उर्वरता लांबा टाइम तक वणी तकी रहे, जणियो भविष्य में भी हऊ बढ़िया उत्पादन किसान भाइया ने मिल रहा है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो ना लारे लारे। देखो रासायनिक अवशेषा में कमी आवारे कारण कही है कि खाद्य पदार्थ जो है ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भी बन रहा है सा।
1: बिल्कुल अंडरलाल, पर्यावरणीय लाभ भी वेरिया है। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना केवल किसान भाइयों के वास्ते नहीं है बल्कि देखो पर्यावरण के वास्ते भी लाभदायक है। अणि भूजल प्रदूषण में कमी आई रही है, मिट्टी रे स्वास्थ्य महीने सुधार वे रो है, जैव विविधता रो संरक्षण वे रो है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी वे रही है और प्राकृतिक संसाधन है वनारो भी संरक्षण वेदोतो को जा रही है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो अणि योजना के तहत जो है बहुत सारा लाभ मिल रहा है सा, और आपनों तो अपना किसान भाई बहनों ने यही कहना है कि देखो टाइम पे मृदा परीक्षण कराणो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड रो उपयोग करनो, जैव उर्वरक जो है वनडो उपयोग करनो, फसल चक्र अपनानो, अंडे अलावा हरी खाद रो उपयोग करनो और जैविक खादारो समावेश करनो, तो अणियों कहिए कि अणि योजना के अंतर्गत जो है भारतीय कृषि ने ज़्यादा टिकाऊपन, पर्यावरण अनुकूलन और लाभकारी बनवा बातें जो है योजना किसानों के बातें सरकार शुरू की दी है, वंडो लाभ जो है आपने भी मिल सकेगा सा।
1: बिल्कुल सा, तो देखो भाई नंदू भैया, तो आप अपने सब किसान भाइया ने वती प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के बारे में और देखो वणा हुणी भी है और अंडी जानकारी भी लेगा और हो जी हम जी ने देखो अंडो उपयोग भी करेगा सा। और
0: बिल्कुल
1: देखो
0: आप ठीक ही रहो सा कि देखो कशी भी योजना सरकार लावे तो देखो वंडी ज्यादा से ज्यादा लोगों में वंडो प्रसार करनो सा, और कहीं योजना के बारे में अगर कहीं किसान भाई बहनों ने जरूरत नहीं है, खबर नहीं है और वन्ने वंडी जरूरत है तो वंडी जानकारी देनी, तो बनी कही है कि वो बनी योजना रो लाभ भी उठाई सके सा।
1: और अपने नजदीकी कृषि केंद्र पे जाने भी सब बातारो पतो कर सके है। और देखो कार्यक्रम में वाता चीता जानकारियां तो और भी करांगा, लेकिन जटा पहली हुना एक राजस्थानी लोकगीत
0: हुना सा।

0: तो अनीता भाई सही होनी हो आप ही राजस्थानी लोगी। और देखो अब यह कार्यक्रम में आप ही बढ़ा तो देखो आगे बात करा कि मिट्टी रो परीक्षण करावरी आवश्यकता क्यों पड़े सा
1: बिल्कुल।
0: मृदा परीक्षण।

0: यानी कि मिट्टी री जांच री बात करा तो खेती में उपज बढ़ावा रे वाते, लागत कम करवा रे वाते और मिट्टी रो अपने स्वास्थ्य ने बनाए रखवा रे वाते, यो हो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सा। अंडे द्वारा आप ही कहिए कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व, अम्लीय क्षारीय यानी कि पीएच स्तर और लवणतारी सटीक जानकारी आप ही हासिल कर सका। जनयू कहिए कि किसान सही मात्रा में वणा ने कतरो उर्वरक रो उपयोग करना है वो पतो चाल जाएगा सा।
1: बिल्कुल। और मिट्टी परीक्षण री जरूरत री अगर बात करा तो देखो उर्वरकारी सही मात्रा रो निर्धारण मिट्टी रो परीक्षण यो बतावे कि देखो मिट्टी में कणा पोषक तत्व जिस तरह नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास री कमी है और कंडी जो है अधिकता है, भूमि री समस्या रो समाधान भी अणियों बही सके। परीक्षण महीने देखो मिट्टी रे पीएच मान और लवणता रो पतो भी चाले और मिट्टी महीने ज्यादा ज्यादा जा अम्लीय और क्षारियता वे तो किसान भाई उचित उपचार कराई सके जिस तरह जिप्सन या पचे चूनो मिलानो है, अन्य भी नाक सके और उपजाऊ बनाई ने राख सके सा।
0: बिल्कुल अनीता भाईसान, लारे लारे देखो मिट्टी रो परीक्षण करावा तो आपने कैसी फसल रो चुनाव करनो है, कैसी फसल उगानो यो भी आपने पतो पड़ जा। क्योंकि देखो हर प्रकार री मिट्टी सब फसलों रे वास्ते उपयुक्त नहीं रहे। मिट्टी रे जांच रे आधार पर आप यो तय कर सका कि कहीं विशेष खेत में कैसी फसल आपने उगानी है जणियों आपने उत्पादन ज़्यादा मिलेगा सा।
1: बिल्कुल। और देखो अणियों पर्यावरण संरक्षण भी वे अंधाधुंध रासायनिक खाद नाखो मिट्टी की गुणवत्ता तो खराब वेरी है। लाड लारे देखो जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। परीक्षण रे आधार पे देखो सीमित उर्वरक रे प्रयोग रे कारण पर्यावरण संरक्षण भी वे और अंडर लाड लारे देखो अगर मिट्टी री जाए उम्र है वह भी लंबी वेती जावे। नियमित अंतराल पे मिट्टी री जाँच करावा वंडी सेहत जो है हऊ वणी तकी रेवे सा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। देखो मिट्टी परीक्षण नू देखो फसल उत्पादन में वृद्धि वेवे, उर्वरक री भी बचत वेवे, मिट्टी री उर्वरता रो संरक्षण भी वेवे और खेती री लागत जो है वणी में कमी वेवे, किसाना री अंडे लार लारे आय में भी वृद्धि वेवे न संतुलित पोषण प्रबंधन वेवे, पर्यावरणीय संरक्षण भी मिले। तो आपनों तो अपने किसान भाई बहनों ने यो इस कहना है कि देखो मृदा परीक्षण जो है आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि रो महत्वपूर्ण आधार है। यो किसाना ने वणा री भूमि री वास्तविक स्थिति री जानकारी देवे और उचित उर्वरक प्रबंधन में भी सहायता करे। नियमित रूप मृदा परीक्षणों के एक मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहे और उत्पादन भी बढ़े और खेती ज़्यादा लाभदायक रहे। तो अंडे वाते प्रत्येक किसान ने टेम टेम पे अपनी भूमि रो परीक्षण कराना जरूरी है सा।
1: बिल्कुल। और देखो भाई टेम टेम पे मिट्टी रो परीक्षण कराएगा तो भी हाउ फसला ले ही सकेगा और फसल चक्र ने भी अपनाएगा तो हमारे पैदावार में बढ़वार वेगा, उत्पादन में भी बढ़वार वेगा सा। और अभी देखो कार्यक्रम में वाता जीता जानकारियां तो और भी करांगा लेकिन जटा पेली हुना एक राजस्थानी लोकगीत
0: होना सा।

0: तो देखो भाई, नंदू भाई सुंदर सोमन भवन राजस्थानी गीत हुनियो, और अभी देखो पर्व दिवस और री बात करा तो आज है संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी है, और लाल लारे देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी है। और सब पेरा बात करा संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस री, तो यो दिवस देखो हर वर्ष 23 जून रे दिन विश्व स्तर पर मनायो जावे है। 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित यो दिवस दुनिया भर में समुदाय रे वाते लोक सेवा रे महत्व सर्वगुण और महत्वपूर्ण योगदान ने सम्मानित तो करे। लाल लारे देखो युवाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र में बनारे करियर बनावारे वास्ते भी प्रोत्साहित करे है सा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो लोक सेवा रो महत्व री बात करा तो लोक सेवा कणी भी देश रे प्रशासन री रीढ़ व्यवसा, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन, कृषि, जल आपूर्ति और दूसरी आवश्यक जितनी भी सेवा है वनडे माध्यमों जनता री सेवा करे। वनारो मुख्य उद्देश्य नागरिका रे जीवन ने बेहतर बनानो, सुविधाएं उपलब्ध कराना और देश रे विकास में गति देनो ऐसा।
0: बिल्कुल, लोक सेवक सरकारी योजना और नीतियां ने धरातल पे लागू करे भी समाज रा कमजोर और वंचित वर्ग तक सरकारी लाभ पहुंचावा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभावे। बनारे प्रयासों विभिन्न विकास रे वास्ते जी योजना है वे सफल वे सके है।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस रे उद्देश्य री जटे आपी बात करा तो देखो लोक सेवा रे कार्या ने और वनारी लोक सेवा री उपलब्धियां ने सम्मान देनो, प्रशासनिक सेवा रे उत्कृष्टता ने वणा ने बढ़ावा देनो सा।
0: युवा ने देखो लोक सेवा रे क्षेत्र में आवारे बाते प्रेरित करनो, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन ने प्रोत्साहित करनो, लाडलारे नागरिका और प्रशासन रे वचमई ने विश्वास ने मजबूत करनो है सा।
1: बिल्कुल आप भी कह रहे हो। देखो वर्तमान समय में लोक सेवा री भूमिका री बात करा तो देखो आज रे डिजिटल युग में लोक सेवा रो स्वरूप तेजी बदली रो ऐसा। ई गवर्नेंस, डिजिटल सेवा, ऑनलाइन प्रमाण पत्र, डिजिटल भुगतान और अलग अलग प्रकार का पोर्टल जो है प्रशासन ने ज़्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाई रहा है। लोक सेवक नई तकनीक का उपयोग करें नागरिका ने तेज और गुणवत्तापूर्ण सेवा भी दे रो है सा।
0: बिल्कुल, और अंडेलाल लारे दूसरो है आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, यो भी हर वर्ष 23 जून ने मनायो जावे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अनिदन मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में विधवा रे सामने आवा वाली गरीबी, सामाजिक भेदभाव और अन्याय रा जतरा भी मुद्दा है वनारी जागरूकता ने बढ़ावो देनो और वनारे अधिकारारी रक्षा करनी।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अणि दिवस रे जटे महत्व री बात करा तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस समाज ने यो संदेश देवे कि विधवा महिला ने समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलना चाहे। यो दिवस सरकार, विभिन्न सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन नागरिका ने वनारे कल्याण रे वाते कार्य करवाने प्रेरित करे। विधवा ने आत्मनिर्भर बनावारे वाते शिक्षा, कौशल और विकास, रोजगार अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है सा।
0: बिल्कुल, अंडे उद्देश्य री बात करा तो देखो विधवा महिला रे अधिकार रे प्रति जागरूकता ने बढ़ानो, सामाजिक भेदभाव और असमानता ने खत्म करनो, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा ने सुनिश्चित करनो, शिक्षा और रोजगार रा अवसर प्रदान करना, विधवा ने देखो सम्मानजनक जीवन जीवा रे वाते प्रोत्साहित करनो।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मानवता, समानता, सामाजिक न्याय रो संदेश देवे सा। समाज रो यो दायित्व है कि विधवा महिला ने भी सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, आत्मनिर्भरता रा अवसर मिले और विधवा महिला ने एक समान अधिकार जनान मिलेगा तो समतामूलक समाज रो निर्माण भी वेगा सा।
0: बिल्कुल सा। और अभी देखो कार्यक्रम में और बातचीत जान

0: तो अनीता भाई साहब, यूं तो हुनी आप ही राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम में देखो आप ही आगे बढ़ा। तो देखो आज है पुण्यतिथि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री,
1: हाँ सर,
0: और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि आज 23 जून ने मनाई जा रही है। ई महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ रा संस्थापक आसा।
1: अच्छा
0: अखंड
1: सर,
0: भारत रे समर्थन रे में मुखर्जी जो है जम्मू कश्मीर ने पूर्ण रूप भारत रो अभिन्न अंग बनावर वाते अपनों जीवन न्योछावर की दो सा। स्वतंत्रता रे बाद जवाहरलाल नेहरू सरकार में आप देश रा पहला उद्योग और जो है आपूर्ति मंत्री भी बनिया हासा। और जम्मू कश्मीर में अलग संविधान परमिट व्यवस्था रे विरोध में अणा आंदोलन की दो सा। और 23 जून 1953 में श्रीनगर में अणारी देहांत वे गयो हो सा। और जटे अणारे प्रसिद्ध नारा री बात करा तो देखो एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, यो अणारो प्रसिद्ध नारो हो सा। और आज 23 जून ने वणारी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और आप भी अणि कार्यक्रम में वणा ने श्रद्धांजलि दे
1: देवान
0: रहा
1: सर।
0: सा।
1: और घड़ी रियाड़ी नारा तो देखो भाई नंदू के अपने कार्यक्रम रो टेम भी वेरियो है, तो आपा चाला सा जय जवान
0: जय किसान।

खेती और घर, ये कार्यक्रम अभी हमारे श्रोताओं ने सुना। श्रोताओं, आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं गीत संगीत के सफर पर, कार्यक्रम फिल्म संगीत के जरिए। सौदागर फिल्म का गीत सबसे पहले आप सुनने जा रहे हैं, आवाज आशा भोसले जी की है।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत जीवा। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजें हैं।

ये आवाज़ें थीं यसुदास और हेमांती शुक्ला की। फ़िल्म का नाम था चश्मे बद्दूर। आइए इस फिल्म संगीत का आखिरी गीत अब आपको सुनवाते हैं पसंद अपनी अपनी। इस फिल्म से आशा जी और सुरेश सुरेश वाडकर की आवाज़ें हैं।

के सुंदर फूल खिले हैं, मुखरित हो गए सरगम के स्वर, मन बीना के मधुर तार बजे हैं।

कभी कभी डरे ये मन कि तुम कहीं ना हो, नैनों का एक सपना तुम ही कहो न चुप रहो, कि तुम सच हो या कल्पना की कोई छलना।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से

0: 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत

0: एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी

0: खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cyber security to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Deva Bhava and urged officers to keep citizens at the centre of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
2: Overall rainfall has been 43% below normal so far, and according to the weather forecast, conditions are likely to remain weak until the week.

लता जी की आवाज़ में अभी ये खूबसूरत सी गज़ल हमने सुनी श्रोताओं। आइए सुगम संगीत की अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौड़ की गाई हुई।

तो श्रोताओं, इस गज़ल के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम तो अब यहीं समाप्त होता है। आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। ये समय है आपको सुनवाने का फिल्म संगीत, और इस भाग में हम आपको सुनवाएंगे नए फिल्मी गीत।

अरमान मलिक और साथियों की आवाज़ों में ये था दे दे प्यार दे टू फिल्म का गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं धुरंधर फिल्म से अरिजीत सिंह और अरमान खान का गाया ये गीत।

मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना शेखर और श्रुति की आवाज़ों में, सनी संस्कारी। ये है अगली फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे साची टंडन, परंपरा टंडन की आवाज़ें।

कालीधर लापता, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना है। ऐसे गाया था राघव चैतन्य ने। और अब आज की फिल्म संगीत की नई फिल्मों के गीतों की लड़ी का ये आखिरी गीत है वॉर 2 फिल्म से। प्रीतम, अरिजीत सिंह, निकिता गांधी और अमिताभ की आवाज़ें हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी है और अब से पूरे एक घंटे तक आपके पास पहुंचेंगे मनचाहे गीत।

ये आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा जी का गाया ये गाना। फिल्म है तेरी मेरी कहानी।

जुदाई फिल्म का गीत अभी हमने सुना श्रोताओं, आवाज़ें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की, फिर जन्म लेंगे। यह है अगली फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे, लता जी और किशोर की कुमार की आवाज़ें एक बार फिर से आप सुनने जा रहे हैं।

कुमार सानू और साधना सरगम ने इस गीत को गाया था, फिल्म का नाम था दीवाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं बीवी हो तो ऐसी, इस फिल्म से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में ये गाना।

श्रोताओं, ये जो गीत अभी आपने सुना उसे हमने चुना था फिल्म चेतना से। गायक कलाकार थे मुकेश। फिल्म संगीत में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गाना। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना दो रास्ते फिल्म का गाना। आइए अब आपको फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनवाते हैं। आशा भोसले ने इसे गाया है, फिल्म का नाम है मेरे सनम।

ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से पहले होंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है।

पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।